इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मदमस्त मतवाले हाथी को देखा है? जब एक विशालकाय हाथी अपने मद में, अपने अहंकार में अंधा हो जाता है तो वह किसी की नहीं सुनता। वह रास्ते में आने वाले सुंदर बाग बगीचों को उजाड़ देता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता है और चारों तरफ तबाही मचा देता है। उस पागल हाथी को शांत करने के लिए महावत को अपने लोहे के तीखे अंकुश से उसके मस्तक पर कड़ा प्रहार करना पड़ता है। हमारा यह जो मन है ना, यह भी वासनाओं और अहंकार की शराब पीकर ठीक उसी मदमस्त हाथी की तरह हो गया है। इसने हमारी भीतरी शांति के सुंदर बगीचे को रौंद डाला है। कबीर साहब आज हमें बता रहे हैं कि जब तक इस मतवाले मन को पीस कर शांत नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी अंतरात्मा को वह परम सुख और परमात्मा का प्रकाश नहीं मिल सकता। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह जागृत दार्शनिक सूत्र। मैं मन्ता मन मारी रे, नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्मा झलकी कबीर सीस।

श्रोताओं, कबीर साहब साधक को एक अत्यंत कठोर और आवश्यक साधना का आदेश देते हुए कहते हैं, मैमंता मन मारी रे। हे साधक, यह जो तुम्हारा मैमंता यानी मदमस्त अहंकारी और मतवाला मन है, तू ज्ञान और विवेक के अंकुश से इसका संहार कर, इसे शांत कर दे, नाना करी करी पीस। इसे केवल ऊपर से मत दबा, बल्कि इसके अहंकार और इसकी वासनाओं को चक्की में डालकर नाना यानी इतना बारीक पीस डाल कि यह पूरी तरह धूल बन जाए, इसका कोई भी पुराना रूप बाकी न रहे। जब मन का यह पूर्ण विसर्जन हो जाता है, तब अलौकिक अनुभव होता है। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, तब सुख पावे सुंदरी, केवल तभी इस सुंदरी यानी तुम्हारी शुद्ध और पवित्र जीवात्मा को वह परम विश्राम, वह अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्म झलके शीस, और उसी क्षण तुम्हारे शीश यानी शीश पर उस भीतरी सहस्रार चक्र के शून्य शिखर पर साक्षात ब्रह्म यानी उस निराकार परमात्मा का परम प्रकाश जगमगाने लगता है, उसकी दिव्य ज्योति झलकने लगती है। यह दोहा कुंडलिनी योग और वेदांत के आत्म साक्षात्कार का शिखर है। आध्यात्म में जीवात्मा को सुंदरी यानी परमात्मा की दुल्हन माना गया है। जब तक मैमंता मन बीच में अड़ा है, तब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। नान्हा करी पीस चित्त की शुद्धि की पराकाष्ठा का प्रतीक है, जहां मन भी एक भी रुत्ति या वासना शेष नहीं रहती। जैसे ही मन विचार शून्य होता है, चेतना का प्रवाह नीचे के चक्रों से उठकर सीधे शीर्ष यानी सहस्रार में पहुंच जाता है। कबीर समझा रहे हैं कि ब्रह्म कोई बाहर देखने की वस्तु नहीं है, वह अहंता मिटती है। जब अहंता मिटती है, तो उसी शीश के भीतर परमात्मा का प्रकाश स्वयं उद्वलित हो जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने भीतर झांक कर देखिए कि हमारे भीतर का यह मैमंता हाथी कितना उत्पात मचा रहा है। हमारी जो मैं, हमारा जो बड़प्पन और हमारी जो जिद है, क्या वह हमें दिन रात बेचैन नहीं कर रही है? हम दुनिया को जीतने निकले हैं, पर अपने ही मन के सामने लाचार खड़े हैं। आज कोशिश कीजिए इस मतवाले मन के विवेक को अंकुश से साधने की। अपने अहंकार को, अपनी वासनाओं को राम नाम के सुमिरन में पीस कर बारीक कर दीजिए। जब यह मन पूरी तरह खाली और शांत हो जाएगा, तो अपने भीतर बैठी वह सुंदरी यानी आपकी आत्मा परम आनंद से खिल उठेगी और आपके ही अंतस में उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को जब हमने देखना शुरू किया तो हमने पास्ट में देखा, तो हमें पता चला कि जितना हम पास्ट को पकड़ के बैठेंगे खुशी उतनी छूटती जाएगी। फ्यूचर में जब हम जाते जाते हैं, प्लानिंग करते हैं या हर अचीवमेंट जो ऐसा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो डिपेंडेंसी वहां पहुंचती रहती है। और बार बार ये कहा भी जाता है कि पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में रहना चाहिए, यानी ये लम्हा, ये मोमेंट जब हम आपके साथ हैं या कोई भी जीवन में जब भी हम जहाँ हैं वो हमारा प्रेजेंट। कैसे उसको अगर हम सही तरीके से लें तो हमारी खुशी कायम रह सकती है और वो इंडेक्स बहुत स्ट्रेट रह सकता है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। सब कुछ तो हमें समझ में आ गया, मतलब जिस जिस पर डिपेंड कर रहा था वो तो छूट गया हमसे, मतलब पास्ट भी छूटा और फ्यूचर पर भी हमें समझ में आया कि जहाँ प्लानिंग सही है, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज नॉट बैड, बट देन माई डिपेंडेंसी ऑफ बींग हैप्पी वो अगर फ्यूचर पर डिपेंड होगी तो उसके साथ तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रेजेंट पे आ जाते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय, मतलब हर बार बात ही की जाती है, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट पे रहना?
1: एक्चुअली क्यों पास्ट और फ्यूचर में क्या होता कि जब भी हम पास्ट का वर्णन करते या फ्यूचर का करते, वी आर इन द डूइंग मोड। यू नो, पास्ट के बारे में व्हाट शुड हैव आई डन, एंड इन द फ्यूचर आई से व्हाट डू आई हैव टू डू, सो इट बिकम्स द डूइंग, यू नो, द ह्यूमन डूइंग। एंड इस प्रोसेस में हम क्या भूल जाते, द बीइंग पार्ट, व्हाट डू आई हैव टू बी। एंड आज हम अपनी वोकैबुलरी को भी देखें तो हमारी सारी वोकैबुलरी क्या है, व्हाट आई शुड हैव डन, व्हाट आई शुडंट हैव डू, व्हाट शुड
0: हैव, हाउ मच आई हैव बीन डूइंग,
1: तो सब कुछ डूइंग पर फोकस्ड है। और इसीलिए हमारी हैप्पीनेस भी डूइंग पर फोकस्ड हो गई कि ये करेंगे, ये होगा तो खुशी होगी। तो राजयोग हमें सिखाता दैट यू आर नॉट ह्यूमन डूइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो फर्स्ट बी हैप्पी, नॉट डू एनीथिंग so that happy. You can get happy, but just that being has to be happy. तो वो being तो present हर moment में हम उसको realize कर सकते। तो present में रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसे हम अगर ध्यान रखें तो फिर present में रहना बहुत easy हो जाएगा।
0: जैसे present में खुश रहना या present
1: में है तो खुश है।
0: हाँ, I know, amazing.
1: present में है तो stable है। disturbance कहाँ आ रहा था, past का कोई इमोशन, कोई हर्ट, या फ्यूचर का कोई, यू नो, फियर या एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन भी क्या होती, क्योंकि हमने कहा एक्सपेक्टेशन हमें डिस्टर्ब करती। एक्सपेक्टेशन मीन्स फ्यूचर में आपका बिहेवियर या कोई सिचुएशन उसको प्रेडिक्ट करना, दिस इज एक्सपेक्टेशन। सो वी आर नॉट इन द प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में होंगे तो एक्सपेक्टेशंस हमारे खत्म होती जाएंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन। तो प्रेजेंट ऑलवेज वुड मीन स्टेबिलिटी। तो इसमें कुछ एक बातों पर हम ध्यान देते। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात इज कि आई द सेल्फ, जो मैं हूँ, आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट, आई एम ऑलरेडी ब्यूटिफुल, आई डू नॉट नीड टू कम्पीट और कंपेयर विद एनीवन। जब हम फ्यूचर में भी अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं तो हम देखते मैं इनके जैसा बन जाऊँ तो, मैं इस पोजिशन पर पहुँच जाऊँ तो, इनके पास जो है वो मेरे पास भी आ जाए, तो देन वी शिफ्ट इनटू द फ्यूचर।
0: आई डोंट फील कंप्लीट, सो व्हाई इवन इफ आई क्रिएट दिस थॉट देन ओनली आई विल फील कंप्लीट,
1: बिकॉज़ फीलिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट थॉट आई क्रिएट।
0: ओके, दैट इज व्हाई आई फील इनकम्प्लीट, बिकॉज आई थिंक दैट आई विल ओनली बी कंप्लीट इफ दिस इज अ थिंग विल हैपन।
1: I think that I will only be happy, suppose I am an assistant manager, let's say, okay? So I create a thought that I will be happy when I become senior manager. When I reach there, I create a thought that I will be happy when I become general manager. So these thoughts kaun create kar raha? ये तो मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, या इनके पास जो गाड़ी है जब ये गाड़ी मेरे पास भी आ जाएगी then I will be happy. तो ये जो सेल्फ है ये एनर्जी है, ये शक्ति है। ये शक्ति को ना कोई वस्तु की जरूरत है, ना किसी पोजीशन की जरूरत है, ये अपने आप में कंप्लीट है और हैप्पीनेस इसकी नेचर है। इसकी कोई वस्तु या कोई पोजीशन या कोई फिजिकल ब्यूटी इसको कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज एनर्जी, दिस डजंट रिक्वायर एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू बी कंप्लीट, दिस जस्ट रिक्वायर्स द राइट थॉट।
0: मेरी यू नो मी बीइंग दिस कंप्लीट एनर्जी एंड मी acting in the present also, maybe, you know, doing things or whatever, I, me being this person, also. How does it relate?
1: I am this person only. What is this person? This person means मैं वो energy जो thoughts create करती, feelings create करती, इस body, इस costume के द्वारा. मैं अपना रोल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ. अब हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस मेरी थॉट है. दिस आई कैन क्रिएट एनी टाइम एनी प्लेस एनी मोमेंट इररिस्पेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग. लेकिन मैंने ही वो थॉट्स क्रिएट किए कि मैं इस पोजीशन पर पहुँचूंगा, मैं इनके जैसा सुंदर हो जाऊँगा, मेरे पास इतना सैलरी आ जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी. जो एनर्जी है ये धन से कैसे, क्योंकि एनर्जी है. एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा? सिर्फ राइट एनर्जी ही चाहिए होगी ना. फिजिकल चीज उसको कंप्लीट नहीं कर सकती. हाँ, ब्यूटी है. अगर कोई हम फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, अगर मेरा हाथ कट गया सपोज यहाँ, तो हाँ मैं फिजिकली इनकम्प्लीट हूँ, क्योंकि ये फिजिकल है, इसका एक फिजिकल पार्ट ठीक नहीं है, तो आई से आई एम इनकम्प्लीट. सिमिलरली ये एनर्जी है, इट्स ओनली थॉट्स. सो ऑल दैट आई हैव टू डू to feel complete, to feel happy, is to create right kind of thoughts. Even agar ab mera ye haath kat gaya yahan se, dono haath kat gaye, dono paav kat, it doesn't matter because I am here. Ye incomplete hoga, ye body incomplete hogi, lekin main phir bhi kahan hu? I am here. To agar main yahan baith kar I can create the right thought, even agar
0: तो अगर मैं वो right thought nahi create kar rahi,
1: to sab kuch hote hue
0: bhi main incomplete hu.
1: एंड तब मेरी वो डिजायर्स की लिस्ट इतनी लंबी होती, ये होगा देन आई विल फील कंप्लीट, ये होगा देन आई विल फील कंप्लीट, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन, एंड देन आई एम ईदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये सब मिलेगा देन आई विल बी कंप्लीट. तो ये जो सेल्फ रियल, इसीलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन हो, कहते ना गो इनवर्ड्स. हम हमेशा गो इनवर्ड्स मतलब क्या? जस्ट रिमेंबर कि मैं एक शक्ति.
0: And again, make it a belief system, you know, make it a belief actually.
1: You make it a belief, for uske saath aap experiment karo, and dheere dheere it will become the truth.
0: Again, you know, the moment we'll start looking for, jab bhi hume ye lagne lage ki hume kuch aur chahiye, khud ko complete karne ke liye, khud ko kitni baar hum kehte hain, oh my God, I can actually remember, ki I want to feel complete, you know, I feel so incomplete. Mujhe aisa lagta hai ki main adhoori hoon.
1: Jaise agar hamare jeevan se koi rishta टूट जाए किसी के साथ, तो मैं लगता है हम उनके बिना हम अधूरे हैं. एंड दिस गोज एंड टेक्स मी इनटू अ वैक्यूम.
0: डोंट इवन क्रिएट दैट,
1: यू नो, इट्स नॉट ट्रू, इट विल ओनली कॉज मी पेन.
0: यस, यू नो, लाइक लेट्स ट्राई. ओह माय गॉड, अमेजिंग. द फर्स्ट थॉट टुडे इन द एपिसोड ओनली हैज मेड मी फील वेरी वेरी गुड, यू नो, बिकॉज समवेयर ये जो अधूरापन है यही हमसे बहुत कुछ करवा रहा है.
1: और ये अधूरापन को ही हम कहते हैं वैक्यूम. जो हम कहते हैं ना, अंदर पता नहीं हॉलो फील हो रहा है. हॉलो मतलब क्या? इनकम्प्लीट, अंदर खालीपन है. क्यों खालीपन है? क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और बाहर ढूंढने के प्रोसेस में सी है कम्प्लीट, लेकिन थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये होता तो, ये होता तो ये किस तरह की थॉट्स हैं? नेगेटिव थॉट्स हैं. ये मेरी एनर्जी को डिप्लीट करती हैं. आई ओनली हैव टू टेक केयर right kind of thoughts to stay complete and fulfilled. And ye jaise hi hum create karna shuru karte, I will feel very very free, liberated, independent. Fir hoga right maine mein independence ki I am free. Nahi to hum hamesha kisi na kisi par ya kisi na position par, vastu par, dhan par dependent hi rehte hain. Aur ek jo bahut important baat aati jo humne pichli baar bhi dekha ki kyun hum future mein jaate hain, क्योंकि वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई ना कोई बाधा है, कोई ना कोई परिस्थिति है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, और वो ऑब्स्टिकल मेरे अंदर दर्द क्रिएट कर रहा है. मैं ये समझती हूँ कि वो ऑब्स्टिकल आया तो मेरे अंदर दर्द है, तो मैं क्या करती हूँ? आगे के बारे में सोचना शुरू करती हूँ, तो एटलीस्ट आई विल बी पेन फ्री. बट आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट. अब प्रेजेंट में ऑब्स्ट्रक्शन जो आई है उसको फेस करने के लिए मुझे क्या थॉट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है.
0: अच्छा, फेस तो फिर भी करना ही पड़ेगा ना.
1: फेस तो करना ही है, फेस करना तो है ही मुझे, लेकिन फेस कैसे करना है? क्या मैं ऐसी थॉट क्रिएट करूं ताकि वो मेरे को एक ऑब्स्टिकल लगे ही नहीं? सो वी क्रिएट अ थॉट, व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे, इट्स नॉट इन द वे. हम कहते हैं ये मेरे लिए
0: रास्ते में,
1: ये मेरे रास्ते में खड़ा है, ये एक्चुअली मेरे रास्ते में नहीं है, ये ही रास्ता है. व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे. दिस परिस्थिति जो आई है ये आई है ताकि मुझे एक ऐसा रास्ता लेना. सो लेट्स से दिस इज एन ऑब्स्टिकल, ठीक है, अब हम जा रहे हैं सड़क पे और बीच में एक बहुत बड़ा
0: पत्थर
1: है। अब हम पत्थर को कहकर कहें कि यही पत्थर मेरे रास्ते में खड़ा है और हम रुक जाएं, नहीं, रास्ता ही एक्चुअली कौन सा है, ऐसा है, रास्ता ही ये है।
0: ओह, तो वो पत्थर आया ही मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए।
1: रास्ता ही वो है। हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं। सपोज रोड डिवाइडर आता, तो व्हाट इज अ रोड डिवाइडर, ऐसे एक रास्ते में बैरियर लगा है, तो हम वहां खड़े हो जाते हैं कि यहाँ बैरियर है, अब हम आगे नहीं जा सकते। नो, वी नो, वी से व्हाट इज द वे, द वे इज लाइक दिस, सो दैट्स व्हाई वी से इट्स नॉट इन द वे, इट्स देयर सो दैट वी सी द वे। और उससे क्या होता है, हमें रुकना नहीं है, हमें उसके अराउंड रास्ता ढूंढना है कि मेरा रास्ता क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल, इट्स जस्ट कम एंड आई हैव टू लुक फॉर द अदर वे, कि कौन सा रास्ता है आगे जाने का। उससे क्या होगा, मेरी थिंकिंग की क्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ नहीं अब मेरा क्या होगा,
0: यू नो, एक वो हताश होने वाला जो एहसास है वो खत्म हो जाएगा।
1: एब्सोल्युटली,
0: क्योंकि जैसे ही वो पहाड़ की तरह पत्थर आ जाता है सामने, हम फिर भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा, इससे मुझे जूझना है, तो उसे तो मुझे इग्नोर ही कर सकती हूँ।
1: वो कुछ है ही नहीं, वो जो आया है परिस्थिति,
0: वो तो वही
1: आई ही, वो रहेगी, वो आई ही उसे लिए है ताकि मैं अपनी सोच को एक नई दिशा देकर, उसको एक ऑब्स्टिकल नहीं, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर, लेकिन उसको अगर एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे तब ना, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी देखेंगे कैसी थॉट्स चलेंगे, इट विल बी अ डिफरेंट क्वालिटी। एंड दैट्स व्हाई व्हेन लाइक यू से सिचुएशन हिट मी, यू नो दिस हैज हैपेंड टू मी, सो वी विल से नथिंग हैपेंस टू मी, इट हैपेंस फॉर मी। जो भी हुआ, जो भी परिस्थिति आई, छोटी से लेके बहुत बड़ी तक, इट्स नॉट दैट हैपेंड टू मी, इट हैपेंड फॉर मी, क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आएगी, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ये परिस्थिति ही इसलिए आई है ताकि वो मेरे क्रिएटिव रिस्पॉन्स को और इन्हांस करती है, इस सिचुएशन को। आप देखो कितनी परिस्थिति,
0: तो टेस्ट नहीं हो रहा है, हम जैसे जिंदगी को एक टेस्ट बना के रखते हैं ना, कि ये टेस्ट आते हैं, ये मतलब हर उससे गुजरना ही पड़ेगा, ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कंपटीशन खेल रहे हैं, यू नो, हर्डल रेस।
1: इट इज, इवन इफ यू लुक एट इट लाइक अ हर्डल रेस, लेट्स से हम जीवन को उस तरह की एक हर्डल रेस भी करें, तो हर्डल रेस होता है तो क्या आता है, जब वो बैरियर आता है, वो हर्डल आता है, तो हम क्या करते हैं,
0: कूद जाते हैं,
1: थोड़ी उधर खड़े हो जाएंगे, ये आया ही मेरे रास्ते में, मेरे भाग्य में ही ये हर्डल है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, डू वी इवन गिव इट अ थॉट देयर, जस्ट जंप। तो जीवन में हर्डल्स तो आने ही हैं, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में आएंगे, कई बार लोगों के रूप में आ जाते, कई बार रिश्तों के रूप में आ जाते, बट अगर हम उस हर्डल को लेकर ही बैठ जाएं, जैसे ही हम उसको हर्डल समझते, सी व्हाट आर वी ट्राइंग टू चेक, वी आर ट्राइंग टू चेक हमारी थॉट्स कैसी चलती हैं। हमारी थॉट ये चलती है, अब मेरा क्या होगा, मेरे भाग्य में, उनका भाग्य तो बिल्कुल ठीक है, उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, एंड वी गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग वो तो अच्छे नहीं है, लेकिन उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है, मैंने तो जीवन में सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ फिर भी सब बुरा बुरा, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसको कैसा देख रही हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरा भाग्य खराब है, सो व्हाट हैज हैपेंड, मैं हर्डल पर आकर वहां खड़ी हो गई और हर्डल को देखकर मैं गुस्सा करती जा रही हूँ, दर्द क्रिएट करती जा रही हूँ, और ये दर्द जब मैं क्रिएट करती, मैं ड्रेन आउट हो जाती हूँ,
0: मैं देख ही नहीं पाती, मुझ में हिम्मत ही नहीं रह जाती फिर कूदने की भी।
1: एब्सोल्युटली, ताकत खत्म हो गई ना।
0: हाँ,
1: हर्डल आया तो उस टाइम एक्चुअली और क्या चाहिए, और भी ज्यादा ताकत चाहिए, अभी तो आप एक स्पीड पर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही हर्डल आया, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू जंप, लेकिन जैसे ही ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट की, कंपैरिजन की, कंपटीशन की, क्रिटिसिज्म की, ताकत सारी वहीं खत्म हो गई और हम वहां हर्डल के सामने आकर खड़े हो गए।
0: इनफैक्ट जो रेस एक्चुअली शुरू भी होती है, आई स्टिल रिमेम्बर, कहा जाता है हर पार्टिसिपेंट को कि फोकस ऑन योर यू नो पाथ, ये आई रिमेम्बर दैट, यू नो, कि हमें कोच क्या कहते थे, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, यू नो, कि आप कहाँ जा रहे हो और आपकी हर्डल्स को कैसे क्रॉस कर।
1: बस अगर आपने सिर्फ अपनी यात्रा पर देखा तो फिर हर्डल को क्रॉस करना बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन जब हमने अपनी यात्रा को एक कंपटीशन बना लिया, जीवन की यात्रा में हम फ्यूचर में क्या ढूंढ रहे हैं, हम सक्सेस ढूंढते हैं, सक्सेस अचीवमेंट्स, ये होगा तो खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने जीवन को कहा इट्स विनिंग एंड लूजिंग, एंड सक्सेस इज विनिंग विनिंग विनिंग, तो मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस, और थोड़ा सा भी अगर वो नहीं हुआ जो राइट मुझे लगा के होना चाहिए, आई कॉल दैट एज फेलियर. जैसे ही फेलियर आया आई गो ठीक. सो व्हाई? बिकॉज आई क्रिएटेड अ बिलीफ सिस्टम, लाइफ इज अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन, कौन आगे जा रहा है किस. ये सारे बिलीफ सिस्टम्स मुझे क्या करेंगे, ड्रेन आउट ही होते रहेंगे. सक्सेस क्या है? सक्सेस इज अबाउट फीलिंग वेरी लाइट, ब्यूटिफुल एंड स्टेबल, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए. दैट शुड बी सक्सेस. क्योंकि सक्सेस किसका सक्सेस है? माय सक्सेस, हु एम आई. सो वो जब समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो हमने क्रिएट की थी ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगे. नहीं तो आज सक्सेस के नाम पे हम बहुत ज़्यादा यू नो ये दर्द से, स्ट्रेस से, गुस्से से, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. एंड सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या? When I achieve
0: winning
1: this, when I achieve this, that's not success. इतना दर्द क्रिएट किया इन द प्रोसेस, इतने लोगों के साथ इतना कुछ हो गया ऊपर नीचे और पहुंच गए वहां पे. Really going to feel successful at the end of it? It's not going to happen. So the right belief
0: system. Actually, फिर वही होता है कि फिर आपका वो सक्सेस को पाने का दूसरा मरहला जो है आपने तय कर लिया होता है फिर.
1: ये नहीं है कि हमें वो चीजें जो हैं, जो ओहदे हैं, जो पोजिशन है, वो सब हैं, आएंगी और आती ही रहेंगी. लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? सक्सेस अगर अपने आप को कहना है तो सक्सेस विल बी कि हर परिस्थिति में हम स्टेबल हैं, हर रिश्ते में हम दे रहे हैं, हर एक जिसको हम मिल रहे हैं उसके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है. देन वी कैन कॉल आर सेल्फ सक्सेसफुल. क्योंकि मैं जो हूँ वो जो मेरी शक्ति है, जो जो मुझे मिलता जा रहा है उसके साथ मैं वो शक्ति एक्सचेंज करते जा रही हूँ, देन आई एम सक्सेसफुल. सो वी नीड टू चेक आर बिलीफ सिस्टम्स. और जो हम पास्ट में बहुत बार हर्ट हो जाते, दैट दे हर्ट मी, यू नो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया है. कभी भी अगर बैठ कर सोचो किसने मुझे धोखा दिया, किसने मुझे हर्ट किया, तो एक लंबी लिस्ट आ जाती. तो इसके लिए हम हमेशा याद रखते कि इट्स नॉट दे हु हर्ट अस. किसी ने हमें हर्ट नहीं किया, उन्होंने जो कहना था वो कहा, जो करना था वो किया. इवन चाहे वो बिजनेस में बहुत बड़ा था या चाहे वो रिलेशनशिप में, उन्होंने किया, मैंने
0: क्रिएट किया वो हर्ट
1: उस सिचुएशन में. जो जो क्रिएट किया, आई क्रिएटेड माय हर्ट. इफ आई रिमेम्बर दिस, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट हर्ट, सी, वी कैन मेक अप.
0: अपने आप को तो हम आराम से माफ भी कर पाएंगे. लेकिन एक बात है कि मतलब जब कोई कहता है कि उसने मुझे ये कह दिया, मतलब मैं उसके लिए क्या था और उसने मुझे ऐसे किया, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी कही हुई बात से मैं वो हर्ट क्रिएट करती हूँ. लेकिन वो इतना फास्ट होता है.
1: लेकिन देखो, कहा उसने ना, वो यहाँ है, उन्होंने कहा अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से, जो भी राइट समझा. अब हम कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था ना. यू नो सो मेनी टाइम्स वी से कि इतना गलत, मतलब हमें लगता है कि सामने वाला इतना गलत कैसे हो सकता था, क्योंकि हमारी डेफिनेशन से वो गलत है. जिसने कहा उसने तो बहुत अपनी डेफिनेशन से राइट ही कहा. लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हर एक ने अपने अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया. यू नो कई बार हम कहते हैं बेसिक डिसेंसी, बेसिक कर्टेसी, बेसिक प्रोटोकॉल, उतना भी नहीं है, ऐसे बोल दिया. लेकिन उसमें भी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि डिसेंसी, कर्टेसी, इसके भी मेजर्स हर एक ने
0: अपने अपने तरीके
1: अपने बनाए हुए हैं. जो मेरे लिए डिसेंसी है, ज़रूरी नहीं हर एक के लिए वही होनी पड़ेगी. एंड मैंने अपनी डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी क्रिएट की, एंड आई हैव गॉट attached to it, and now I expect that everyone should follow it. And jo usko follow nahi karega, to I get very very hurt. Then I always go into the past. Unhone mujhe hurt kiya, usne mujhe dhoka diya. Let them go. Wo sare jo yahan baithe hue hain, let them go. Kyunki agar unko yahan bitha kar rakhenge, to hum wo dard create karte jayenge. So let's learn ki unhone hume dhoka nahi diya. हमने उनकी वो बात से अपने अंदर वो क्रिएट किया. अभी भी वो आ रही हैं वो थॉट्स, अभी भी वो फीलिंग्स आ रही हैं. जब भी वो आए, रुक कर अपने आप को फिर से याद दिलाएं कि ये जो हर्ट अभी क्रिएट हो रहा है, ये कौन क्रिएट कर रहा है, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, देन इट्स ओके. यू नो इट विल टेक सम टाइम, नॉट दैट अभी डिसाइड किया और अभी खत्म हुआ, लेकिन सिर्फ जब वो अगली बार क्रिएट होगा तो आप अपने साथ प्यार से बैठें और अपने आप को सिर्फ याद दिलाएं कि ये हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है अभी, ये हर्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ ये धोखा उन्होंने दिया.
0: अच्छा, एंड देन नथिंग टेक्स ओवर ना देन. सी अगेन, अगर अभी भी मैं उन फीलिंग्स को क्रिएट करना बंद नहीं कर पा रही, सो दैट्स ओके. बट इट्स लाइक ऐसा नहीं एहसास है कि मतलब समवन एल्स हैज टेकन ओवर.
1: आई एम स्टिल, आई एम एबल टू टेल माय सेल्फ कि यस, ये दर्द की थॉट्स ये मैं क्रिएट कर रही हूँ और मुझे ही इनको फिनिश करना है.
0: तो किसी न किसी टाइम पे अपने आप से बात करते करते करते करते मुझ में ये ताकत आ जाएगी कि मैं कर पाऊँ.
1: जब हमें ये पता चलता कि हम क्रिएट कर रहे हैं, फिनिश करना इजियर होता है. जब तक उन्होंने किया तो हम तो अपने आप को कह देते जीवन भर मैं नहीं भूलूंगा ये. क्यों? क्योंकि उन्होंने किया तो उनकी गलती इतनी बड़ी है कि जीवन भर उसे भूलना नहीं चाहिए. उनको क्षमा करना, हमें क्षमा ही नहीं करना, मैं जीवन भर उनको फॉरगिव नहीं करूंगा. उनको नहीं फॉरगिव करना है. वी आर क्रिएटिंग पेन फॉर आर सेल्फ टिल वी डोंट लेट देम गो. तो सिर्फ अपने आप को याद दिलाएं, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, टॉक टू योर सेल्फ विद लव. खत्म हो जाएगा, दो बार चार बार याद आएगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा. लेकिन जहाँ वो थॉट्स उनके बारे में चली जाती हैं,
0: फिर वो तो हमारे हाथ में नहीं होता ना, फिर वो तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स, क्योंकि उनके बारे में तो मुझे पूरी फ्रीडम में मिल जाती है कि मैं किसी भी हालत तक सोच सकती हूँ. लेकिन अपने लिए अगर मैंने खुद क्रिएट किया ये पता चल जाएगा, देन दिस इज रीअश्योरेंस.
1: और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि अगर दूसरे ने किया तो मेरा दर्द में रहना जस्टिफाइड हो जाता है. यू नो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आपने आकर मुझे जोर से यार मारा, तो आपने मारा ना, मेरे को दर्द हो रहा है अब, तो मैं दर्द में बैठती हूँ, उन्होंने मुझे मारा.
0: हमसे हमें अगर अपने आप लगता है ना तो इतना दर्द नहीं होता. यस,
1: लेकिन अब तो मार भी कौन रहा है? बार बार जब मैं वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपने आप को मार रही हूँ. दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज इमोशनल अब्यूज एवरी टाइम क्रिएटिंग दैट थॉट. सो आई जस्ट हैव टू टेल माई सेल्फ कि अपने आप को मारना तो बंद करो, दर्द तो अपने आप खत्म हो जाएगा. बार बार वो थॉट क्रिएट करते हैं तो जोर जोर से हम अपने आप को मार रहे हैं, कोई और नहीं मार रहा. आप मुझे मारो तो मुझे, मेरे हाथ में नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग है, आप मुझे मार रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को मार रही हूँ. तो अपने आप को रोकना ये तो इजी हो जाना चाहिए.
0: गुस्से में जब हम होते हैं तो अपने आप को फिजिकली भी मार रहे होते हैं.
1: यू नो दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन. कई भाई बहने ईमेल्स में या क्वेश्चंस में ये भेजते कि हम जोर जोर से अपने आप को यहाँ मारते हैं या कई बार तो दीवार के साथ. दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ फीलिंग ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है. क्या कब वो होता है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप मतलब आप बिल्कुल
0: बदल ही नहीं रहे, आप
1: समझ
0: ही नहीं रहे.
1: तो मैं अपने आप को ही मारना शुरू कर देती हूँ. देखो, जो फिजिकली अपने आप को मारना शुरू कर दे, अंदर वो कितना अपने आप को अब्यूज कर रहे होंगे. इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन, बहुत ज्यादा दर्द अपने आप को देना. कुछ एक बातों को इस तरह से अगर हम ध्यान रखें कि आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट, आई एम ऑलरेडी ब्यूटिफुल, मुझे कम्पीट नहीं करना है, मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है इट हैज़ कम ओनली फॉर मी टू लर्न द वे. ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, और ये इट हैज़ नॉट कम टू मी, इट हैज़ कम फॉर मी टू लर्न हाउ टू क्रिएट द रिस्पॉन्स. और दूसरा, सक्सेस की जो परिभाषा है वो है स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ राइट एनर्जी इन रिलेशनशिप्स, एंड कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, नो वन कैन हर्ट मी. तो जिन जिन को आज दिन तक समझा था, एक एक करके उनको हल्का होकर जाने दे, एंड देन यू सी हैप्पीनेस कैसे हो जाएगी.
0: इट बिकम्स योर प्रॉपर्टी एक्चुअली, एंड दिस इज व्हाट वी ऑल वांट. सो व्हाई डोंट वी ट्राई इट आउट. जो आज अभी हमने जो इनफैक्ट, अगर आपको इस श्रृंखला की शुरुआत याद हो तो हमने बात की थी कि जो हमारी फीलिंग है हैप्पीनेस की, हम बात कर रहे थे इधर हैप्पी और सैड. सो हैप्पीनेस भी एक फीलिंग है, सैडनेस भी एक फीलिंग है, और वो मेरे थॉट्स या मेरे बिलीफ सिस्टम्स से आ रही थी. कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ सिस्टम था पूरा का पूरा कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे कुछ चाहिए कम्प्लीशन के लिए, या मेरा सक्सेस या मेरी अचीवमेंट या मेरे वो व्यक्ति या वो लोग या मेरे अपने बच्चे भी. कितनी बार कितनी चीज़ों पर हम खुद को कम्प्लीट होने का एहसास दिलाते हैं अगर वो हैं तो. ये डिपेंडेंसी है. अगर मैं कंप्लीट हूँ, ये फीलिंग मुझे आ जाए, ये मेरा बिलीफ बन जाए कि आई एम अ कंप्लीट बीइंग, एंड देन आई एम इंटरेक्टिंग विद अदर्स, अमेजिंग. इट्स गिव्स मी सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग. और ये हैप्पीनेस का सबसे आई थिंक पहला पायदान होगा. और उसके बाद जिस तरह से कोई भी ऑब्स्टिकल आ रही है, जैसे आपने कहा कि उसे हम एक इट हैज़ नॉट कम टू मी, इट इज़ फॉर मी, सो आई हैव टू लुक फॉर द राइट डायरेक्शन. तो कई सारी बातें आज हमने समझी, उन्हें अनुभव में लेकर आए. ये बिलीफ सिस्टम अपनी अब डायरी में हम नोट करना शुरू कर दें और हर रोज़ पढ़ने लग जाएं, ताकि जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं वो डिलीट होने शुरू हो जाएं. कोई बात, कोई मन में आपकी बात ऐसी है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम है जो डिलीट नहीं हो पा रहा, प्लीज़ फील फ्री, आप हमें फ़ोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सचिन शिवानी, थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत के लिए. ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रयास है ये आगे भी चलेगा. हर बात जो हम कह रहे हैं, जो मान रहे हैं, उसे अपने अनुभव में जरूर लाएं. फिर मिलेंगे. ओम शांति.

0: श्रोताओ नमस्कार। आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आज हम गीता का सार सुनेंगे।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
2: विनोबा जी कहते हैं कि गीता का सार अगर थोड़े में कहना हो तो तीन बातों में कह सकते हैं। एक, गीता में एक बात कही गई है कि दुनिया में ऊंच नीच का भेद मिथ्या है। आदमी की योग्यता उसकी भक्ति पर निर्भर होती है, जाति पर नहीं। भक्ति मार्ग में जाति भेद नहीं और अधिकार भेद भी नहीं है। यह बहुत बड़ी बात गीता में बताई है। दूसरी बात यह है कि जिसको कर्तव्य कर्म मिला है वह उसे आमरण फल की कोई अपेक्षा न रखते हुए निष्काम बुद्धि से निरंतर करते रखना चाहिए। अपने को जो काम मिला वह न तो बड़ा होता है न छोटा, वह अपनी योग्यता के अनुरूप है। जिसकी जो भूमिका, योग्यता और मन का भाव रहता है उसके अनुसार जीवन जीने में श्रेय है। गीता की तीसरी सिखावन यह है कि चित्त की शुद्धि अखंड करते रखना चाहिए। अलग अलग गुणों का विकास जीवन में करना चाहिए। अपने मन में यदि क्रोध है तो क्षमा गुण विकसित करके क्रोध को दूर करे। जीवन में कठोरता हो तो दया बुद्धि का विकास करना चाहिए। इस तरह जीवन में से एक एक दोष दूर करते हुए देवी संपत्ति, सद्गुण आदि विकसित होते रहे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए।
0: गीता का सार एक वाक्य में आता है, मामेकम शरणम व्रज, एक परमेश्वर की शरण जाओ। ठीक यही सार कुरान में कहा गया है, इस्लाम यानी ईश्वर की शरण में जाना। इसमें सलम धातु है, उसका अर्थ है शरण जाना। इसी पर से सलाम शब्द बना। सलाम यानी शांति। परमेश्वर की शरण जाओ तो शांति मिलेगी। गीता भी यही बात कहती है, तमेव शरणम गश्च सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादत पराप शांति स्थानम प्राप्त्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तू सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा तो उसकी कृपा से तुझे शाश्वत शांति मिलेगी। शरणता और शांति, ये दो चीजें गीता के एक ही श्लोक में हैं और वही कुरान में इस्लाम इस एक शब्द में है। जो ईश्वर की शरण में जाएगा वह सत्कार्य करता रहेगा, सदाचारी बनेगा। भक्ति के साथ सदाचार होना ही चाहिए। यह गीता में ध्वनि है, कुरान में भी कहा है, अल्लज़ीन आमन व अमिलुस्सा लिहाती, जो ईश्वर पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं यही मुसलमान की परिभाषा है। ईश्वर पर विश्वास रखो, परोपकार में लगे रहो, सारा भार परमेश्वर पर छोड़ दो, किसी की आस दिल में मत रखो। यही गीता का और यही कुरान का उपदेश है।
2: रामदास स्वामी ने कहा है, सकामा से नावड़े गीता, मतलब सकाम मनुष्य को गीता अच्छी नहीं लगती। गीता में सकामता के लिए, परलोक के विषय में अनुचित कल्पनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। गीता परलोक को भी मानती है और इहलोक को भी मानती है, लेकिन उसकी मुख्य दृष्टि चित्त शुद्धि की है। गीता कहती है कि समाज की और व्यक्ति की चित्त शुद्धि यही हो जानी चाहिए। वह यह नहीं कहती कि मरने के बाद वह सधे। संत यही बात कहते हैं, याची जन्मे एणे चिकाड़े, अर्थात इसी जन्म में, इसी काल में, इसी जगह पर, इसी दुनिया में अनुभव आना चाहिए, उधार का प्रश्न नहीं। गन्ने का रस जब पिया जाता है तभी मीठा लगता है, यह नहीं होता कि अभी रस पी ले और मरने के बाद उसका मीठा स्वाद चखो। उस फल की अनुभूति यही प्राप्त होती है, जैसे ऐहिक अनुभूति यही प्राप्त होती है, वैसे ही पारलौकिक अनुभूति का यही अनुभव आएगा। गीता कहती है कि मनुष्य आत्मसमाधान का अनुभव यही इसी देह में ले सकता है।
0: गीता यह शाब्दिक शास्त्र नहीं है, जिसे फलश्रुति कहते हैं। गीता निष्कामता सिखाती है, निष्फल फलश्रुति गीता में कहीं भी नहीं मिलेगी। गीता जहां जहां फलश्रुति बनाती है वहां बिल्कुल ठीक बताती है, मतलब जो उस वक्त विचार में से निकलता है वही वहां बताया होता है। एताम विभूति योगम च मम यो वेचि तत्वतः का फल बताया। सोडविकम्पेन योगेन युजेने नात्र संशयः, जिसने भगवान के योग को जान लिया उसे निष्कंप योग प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक निश्चित फल बताया। यह जो फल बताया वह क्या है? यहां इस ज्ञान

0: क्या है, उन्होंने बड़े मजे से समझाया। गीता गीता गीता, इस तरह जप किया करो। गीता गीता ऐसा जल्दी जल्दी बोलना शुरू करोगे तो वह तागी तागी होगा। अर्थात बंगाली में तागी का अर्थ त्यागी होता है। फिर आपको गीता का सार मिल जाएगा। उनका समझाने का एक तरीका था, जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे वो समझाते थे। सहज विनोद से, सादे शब्दों में वेदांत समझाते थे। त्याग ही गीता का तात्पर्य है। कोई उसे अनासक्ति कहता है तो कोई फल त्याग। गीता में मोक्ष संन्यास योग बतलाया है, यानी मोक्ष का भी त्याग गीता समझाती है। यह त्याग की हद हो गई। यह मुक्ति की कैची मुक्ति पर ही चलाई गई है और उनको मोक्ष संन्यास कहा। शब्द कुछ भी ले, तात्पर्य यही है कि गीता त्याग सिखाती है। यह त्याग अभावात्मक नहीं बल्कि भावात्मक चीज है। त्याग करना यानी फेंक देना नहीं बल्कि बोना। समाज के लिए जो त्याग किया जाता है वह बीज बोने जैसा होता है, उससे खूब पैदावार होगी। समाज में प्रेम बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। गीता ने त्याग की कसौटी बताई है, त्यागत शांति।
1: विनोबा जी कहते हैं कि गीता में तीन क्रियाएं करने के लिए कहा गया है। एक है दान धर्म, हम हमेशा खाते रहते हैं इसलिए हम पर अनेकों के उपकार हुए हैं। इस हालत में हम समाज के लिए कुछ न कुछ देते रहें। गीता कहती है कि दान क्रिया ही तरह यज्ञ यानी उत्पादन क्रिया भी सतत चलनी चाहिए। सृष्टि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है, उसका जितना क्षय होता है उतनी उसकी पूर्ति करनी चाहिए। खेत में मेहनत करने के बाद उसमें खाद डालकर बीज बोने पर फसल ज्यादा होती है। इसी तरह हमारे कारण सृष्टि में जो क्षय होता है उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। हम सृष्टि को देते रहे और वह हमें देती रहे। तीसरी बात, गीता यह कहती है कि चित्त शुद्धि के लिए तप करें। हमारे सब काम चित्त से चलते हैं। जीवन के सब कार्यों का आधार चित्त है। यदि चित्त शक्ति क्षीण या मलिन होती है तो सारा जीवन क्षीण और मलिन होता है। चित्त शक्ति की क्षति होने पर उसकी पूर्ति के लिए अध्ययन चिंतन निरीक्षण करते रहना चाहिए। शरीर को पीड़ा देना आदि क्रियाओं को तप मानते हैं, वह गलत है। चित्त की शुद्धि तप है और उसे बढ़ाने के लिए जो कुछ चिंतन अध्ययन ध्यान नामस्मरण आदि करने पड़ते हैं वे सभी तप है। गीता कुरुक्षेत्र में कही गई है। संस्कृत में कुरु का अर्थ है कर्म कर। कुरुक्षेत्र यानी कर्म की भूमि। इस कर्म की भूमिका पर गीता कही गई है और वही उसे मेहनत के कानों से सुनना है। गीता का रहस्य नारियल जैसा है। नारियल का ऊपरी हिस्सा शुष्क और कठोर है, भीतर का मृदु और स्वादिष्ट। इसी तरह गीता में ऊपर योग का कवच है और भीतर भक्ति का मृदुल अंश है। विनोबा जी कहते हैं कि कृष्णाष्टमी के निमित्त मेरा भी गीता सार का चिंतन चला। मेरी कल्पना एक श्लोक की नहीं थी, मुझे 18 श्लोक में सार लाना था। बुद्धि की कसरत कहिए, चित्त का विश्राम कहिए, किसी भी तरह से गीता में रमना इतनी ही अभिलाषा। कृष्णाष्टमी तक निर्णय होना चाहिए, ऐसी मुद्दत बांध रखी थी। तदनुसार हुआ चुनाव ऐसा है। चुनाव में सबका समाधान हो यह संभव नहीं होता और वैसी अपेक्षा भी नहीं रहती, परंतु इस चुनाव के पीछे एक दृष्टि है। दो चार विशेष श्लोक को छोड़कर बाकी सारे श्लोक सीधे अर्जुन को संबोधित कर रहे हुए हैं। अनेक प्रकार के विवेचन के प्रभाव में

0: मुख्य बोध ढक जाना संभव है, उसे प्रकाशित किया है। बोध रूप सार निकालने का ही इरादा था। विभूति, विश्वरूपी, त्रिगुण आदि विषय 18 श्लोकों की मर्यादा कम पढ़ने के कारण लिए नहीं। ऐसा नहीं, संख्या ज्यादा ली जाती तो भी वे विषय उनका महत्व और उपयोग जानते हुए भी लिए नहीं जा सकते थे। इस चुनाव का विवरण मैं करूंगा नहीं, श्रोता चित्तपूर्वक उन्हें पचा ले। हे अर्जुन, निर्वित मत होना, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। शूद्र और दुर्बल वृत्ति छोड़कर उठो, लिप्त नहीं होता जैसे पानी में कमल पात्र। आत्मा का उद्धार स्मय करे, उसकी अधोगति कभी न होने दे। आत्मा ही हमारा बंधु हितकर्ता है और आत्मा ही हमारा शत्रु है, इसलिए सतत मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मन और बुद्धि मुझे समर्पण करो, फिर निसंशय तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। जो तुम खाते हो, हवन करते हो, देते हो, जो तप करते हो, जो कुछ तुम करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इससे सब शुभ अशुभ कर्म बंधन तोड़कर, योग और संन्यास एकत्र जोड़कर, तुम मुक्त होकर मुझसे एक रूप हो जाओगे। हे अर्जुन, जो कर्म में तन्मय है, भक्ति में भरा है, जगत में निसंग और निर्वैर है, मुझ पर अपना भार रखता है, वह मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, मन को मुझ में रखो, बुद्धि मुझ में स्थिर करो, जिससे कि निसंशय तुम मुझ में एक रूप हो जाओगे। प्रेम से, अनन्य भक्ति से मेरा जतन करो, मुझे नमन करो, तुम मुझे प्रिय हो और मुझसे मिलोगे, यह मेरा निश्चित आश्वासन है। हे अर्जुन, सर्वधर्म छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सब पाप जलाकर नष्ट कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो।
1: भिन्न भिन्न दृष्टि से गीता सार चुना जा सकता है। उपरोक्त 18 श्लोक के अतिरिक्त स्थित प्रज्ञ के 18 श्लोक एक अर्थ से गीता सार ही है। गीता को मैंने साम्य योग नाम दिया है। उस दृष्टि से छठे अध्याय के 29 से 32 ये चार श्लोक गीता सार मान सकते हैं। उससे भी बड़ा चुनाव यानी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक तक 108 श्लोक। इन 108 श्लोकों में संपूर्ण गीता सार रूप में संग्रहित है। गीता के शेष श्लोक इस 108 श्लोकों का स्पष्टीकरण है। तो यह हुआ गीता का मेरा चौथा चुनाव। गीता का थोड़े में सार निकालना कितना कठिन होता है, इसका मुझे अनुभव है। 18 श्लोकों में गीता का सार लाने का यत्न पिछले दिनों में मैंने किया था। कितने ही श्लोक इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें लेने का मोह कैसे टाले, यह बड़ा प्रश्न होता है। आखिर किसी भी तरह मैंने चुनाव तो कर डाला, लेकिन उस चुनाव को मनोविनोद से ज्यादा महत्व मैंने नहीं दिया। उस समय की अपनी अपनी आवश्यकता के लिहाज से कोई कैसा भी संकलन करे, उसको सार्वजनिक या सर्वकालीन मूल्य रहेगा, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती।
0: गीता सार के लिए श्लोकों के संकलन पर विनोबा जी बोले, पिछले दिनों गांधी जी ने अपने पुत्र रामदास के लिए 40-50 श्लोकों का एक संकलन किया था। रामगीता के नाम से वह प्रकाशित भी हुआ है। 2, 3 और 4, 5 ये कर्मयोग पर अध्याय और उसमें भी दूसरा और तीसरा अध्याय गांधी जी की दृष्टि से गीता का मुख्य भाग कहा जाएगा। लेकिन मजा यह है कि उस वक्त रामगीता में गीता के इन अध्यायों का एक भी श्लोक नहीं है। श्रद्धालु मन के लिए उपयोगी आश्वासन देने वाले श्लोकों का चुनाव करने मात्र ही दृष्टि इसमें थी और इतनी ही उस प्रयत्न की फलश्रुति। गीता का सार निकालने का इरादा ही नहीं, इसलिए उसके निष्फल होने का सवाल ही नहीं। किसी समय रमण महर्षि ने अपने शिष्यों के उपयोग के लिए गीता के श्लोकों का संकलन किया था। उसमें भी वैसे ही करीब 40 श्लोक थे। उसमें उनके एक शिष्य ने उस संकलन की एक पुस्तिका प्रकाशित की। उस पुस्तिका को उस शिष्य ने एक छोटी सी प्रस्तावना भी जोड़ दी। वह बड़ी मनोरंजक थी। इस समय मेरे पास नहीं है, मैं स्मरण से लिख रहा हूँ। उस प्रस्तावना में कहा गया था, इस विषम जमाने में सारी गीता का अध्ययन कैसे संभव हो सकता है, इसलिए हमारी करुणा के कारण भगवान श्री कृष्ण ने रमण महर्षि का अवतार लिया और ये श्लोक हमें चुन कर दिए। मैंने इसमें से यही सार निकाला कि गीता के श्लोकों का एकांगी संकलन समाज सह नहीं सकता, फिर चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति द्वारा वह क्यों न हुआ हो। रमण महर्षि कोई छोटे आदमी नहीं थे, लेकिन शिष्य को पक्का विश्वास था कि कृष्णावतार का जामा पहनाए बिना रमण महर्षि के नाम से भी यह सार मान्य नहीं होगा। और उसका यह विश्वास गलत नहीं था, क्योंकि उस चुनाव में आत्मानात्म विवेक पर श्लोक चुनने की दृष्टि थी। वह दृष्टि कितनी ही उपयुक्त क्यों न हो, उस एक में सारा गीता का सार कैसे समाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संकलन ही न करे। अपने उपयोग के लिए संकलन अवश्य किया जा सकता है। अपने संकलन के अनुसार जीवन जी सके तो सारी गीता का फल भर पाया। वैसे किसी का संकलन दूसरे किसी को ठीक वैसा का वैसा ही जच जाने की संभावना कम ही रहती है, और वैसी आवश्यकता भी नहीं। सार यही कि थोड़ा पढ़े, ज्यादा आचरण करे। वास्तविक गीता सार कहाँ छिपा है यह तो भगवान ही जाने।
1: गीता की समन्वय दृष्टि के बारे में विनोबा जी कहते हैं, गीता निर्विवाद आत्मानुभव का ग्रंथ है, जिसमें सब विचारों का सामंजस्य सदा हुआ है। अनेक भाषाओं के अध्ययन में मैंने ऐसा दूसरा ग्रंथ नहीं पाया। बच्चे विसंवाद पैदा करते हैं, वैसे ही विसंवादकारी ग्रंथ बहुत बड़े हैं। लेकिन माता के लिए विसंवाद है कि नहीं, सब सुसंवाद ही है, वही गीता की भूमिका है। एकांगी अनुभव से या असमग्र दर्शन से वाद खड़े होते हैं, पूर्ण दृष्टि में वाद क्षीण हो जाते हैं। गीता ने नीति को भी नया रूप दे दिया। नीति में हमेशा यही सवाल पैदा होता है, कर्म की अकर्म। कर्म यानी क्या? जिस कर्म से चित्त में क्षोभ न हो और जिस फल के साथ मनुष्य बंधा रहे, ऐसा कर्म। तो सवाल आएगा कि हाथ में शस्त्र लिया जाए या नहीं लिया जाए। क्षत्रिय कहेगा कि जरूर लेना चाहिए, ब्राह्मण कहेगा कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दो मूल्य है। इसका मूल्य है कि न्याय की रक्षा होनी चाहिए, उसका मूल्य है शांति की रक्षा होनी चाहिए। आज दोनों अलग अलग मूल्य पकड़कर बैठे हैं, न्याय और शांति। अब क्या करें? विश्व को शांति चाहिए या नहीं? चाहिए तो न्याय के साथ चाहिए या अन्याय के साथ? जिसने जिस मूल्य को पकड़ा है वही उसी के बारे में सोचेगा। दो पक्ष एकदम अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन गीता की खूबी यह है कि दोनों में से किसी एक का पक्ष लिए बिना उसने कर्म अकर्म की कसौटी ही बदल दी।
0: तीन प्रकार के समन्वय का प्रतिपादन करते हुए विनोबा जी कहते हैं, मेरा मानना है कि गीता अनेक प्रकार का समन्वय करती है। एक तो तत्व ज्ञानों का समन्वय, जिसके बिना जीवन की बुनियाद बनती नहीं। दूसरा समाज और व्यक्ति का समन्वय, इसके बिना न समाज आगे बढ़ता है न व्यक्ति आगे बढ़ता है। तीसरा मनुष्य के अंतर्गत देह और आत्मा में जो द्वंद्व है उसका समन्वय। ये तीन प्रकार के समन्वय गीता में प्रधान हैं और तीनों की अत्यंत आवश्यकता है। इन तीनों प्रकार के समन्वय से ही जीवन में समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं। व्यक्ति और समाज का सामंजस्य ध्यान में रखते हुए मनुस्मृति में लिखा हुआ मिलेगा, साथ साथ देह और आत्मा के बीच में समन्वय होना चाहिए, लेकिन तत्वज्ञान का समन्वय नहीं मिलेगा। वह एक समाज शास्त्र का ग्रंथ है, इस दृष्टि से उसे देखना चाहिए। तो कई चीजें इसमें ऐसी मिलेगी जो दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलेगी। योग सूत्र में आप न समाज को देखेंगे, न बहुत ज्यादा तत्वज्ञान को देखेंगे। देह और आत्मा के बीच मन खड़ा है, उसके विषय में आपको विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह एक विशेषज्ञ शास्त्र है। अभी मैं तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पढ़ रहा हूँ, इसमें भक्ति तत्व की छानबीन आपको बहुत ही सुंदर मिलेगी। ऐसे भिन्न भिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ है उनका भी समाज पर बड़ा उपकार होता है। वे एकांगी होते हुए भी उनके विषयों में उनसे जो मार्गदर्शन मिलता है वह दूसरे से नहीं मिलता। दोनों से बढ़कर तीसरा है देह और आत्मा का समन्वय। मनुष्य का एक भाग शरीर है और दूसरा भाग आत्मा है, और दोनों का सम्मिलन है। मनुष्य कितना भी देहासक्त हो, उसको कभी न कभी आत्मा के समाधान के लिए कुछ न कुछ करने की इच्छा होती है। फिर वह भले ही थोड़ा दान देकर समाधान कर ले, या गंगा की यात्रा करके समाधान कर ले। इससे उल्टे अत्यंत आत्मनिष्ठ पुरुष को भी देह की बात कुछ न कुछ सुननी ही पड़ती है। जिस नौकर से काम लेना है उसका कुछ भी न सुने तो वह बड़ा जालिम मालिक कहा जाएगा। देह से अच्छा काम लेने के लिए और उससे धर्म कार्य करवाने के लिए इसकी कुछ तो सुननी पड़ती ही है। इसलिए समन्वय का मुख्य विषय देह और आत्मा के समन्वय का है।
1: देह और आत्मा की मांगे एक दूसरे के खिलाफ न जाए और दोनों का उचित समन्वय होकर जीवन समग्र रूपे न समाधान कारक बन जाए, यह सबसे बड़ा समन्वय है और उसके लिए उपयोगी ग्रंथ के तौर पर गीता है। गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ मैंने नहीं देखा जिसमें वह समन्वय पेश किया हो। मैं गीता की महत्ता को बता रहा हूँ, उसमें देह और आत्मा दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर जीवन का समन्वय पेश किया है। देह और आत्मा का समन्वय कैसे किया जाए? तो आत्मा के लिए संन्यास और देह के लिए योग, यह है गीता का समन्वय। योग के बिना देह नहीं चलेगा। अगर योग नहीं करोगे तो संन्यास भी सधेगा नहीं, स्वैराचार होगा। इसीलिए योग पूर्वक देह के साथ व्यवहार करना चाहिए और आत्मा के लिए संन्यास कहा। योग और संन्यास का समन्वय इस प्रकार से होता है, उसका मैंने नाम रख दिया साम्य योग। गीता का अपना खास विचार है जिसमें सबका समन्वय होता है, सब आ जाते हैं। संन्यास में सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग आता है तो चित्त समत्व युक्त होता है। योग में सब प्रकार के साधनों का समतुलन होता है, इसलिए चित्त में साम्य आता है। तो साम्य एक ऐसी वस्तु है कि जहाँ योग भी पहुँचता है और संन्यास भी पहुँचता है, इसीलिए मैंने गीता को साम्य योग कहा है।
0: बौद्ध विचार और वेदांत के समन्वय पर विनोबा जी कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ दर्शन पुस्तक में ब्रह्म निर्माण का आधार लेकर बौद्ध और वेदांत विचार का समन्वय किया गया है। इसके लिए गीता की परिभाषा में एक नया श्लोक बनाकर एकम ब्रह्म च शून्यम चय पश्चन्ति स पश्चन्ति, शून्य और ब्रह्म एक है, जो ऐसा देखता है वही सही देखता है। हमने स्थित प्रज्ञ दर्शन किताब समाप्त की है। बौद्ध धर्म शून्यवादी है, गीता ब्रह्मवादी है, लेकिन शून्य और ब्रह्म में फर्क नहीं। जहाँ कुस्मृतियाँ और अशुभ स्मृतियाँ समाप्त होती है वहाँ आत्मस्मृति जागृति है तथा शुभ स्मृतियाँ हजम होती है। इसी को बौद्ध शून्य कहते हैं। और गीता भी कहती है कि जहाँ आत्मस्मृति जागेगी वहाँ अन्य स्मृतियाँ खत्म होगी। गीता ब्रह्म का नाम लेती है। अहंकार का मिटना और प्रकाश का आना दोनों अलग अलग नहीं है। एक कहता है अंधेरा मिट गया, दूसरा कहता है उजाला हो गया। इस दोनों पक्षों का वाद कैसे मिटेगा? दोनों एक ही है, यह कहने से ही मिटेगा, दूसरे तरीके से नहीं मिटेगा। इसलिए शून्य और ब्रह्म के समन्वय का विचार हमने रखा। इस समन्वय की जरूरत हमने सतत महसूस की है। स्थित प्रज्ञ दर्शन के पहले हमने एक किताब लिखी थी जब हम जवान थे, उपनिषदों का अध्ययन। वह हमारा प्रथम लेखन है। वह अत्यंत जटिल ग्रंथ है, फिर भी गहरा है। आज भी उसमें खास फर्क करने की जरूरत हमें महसूस नहीं होती। बुद्ध भगवान का उपनिषद के अध्ययन के साथ वास्तव में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस पुस्तक की समाप्ति धम्मपद के एक वचन से की है। उसी तरह स्थित प्रज्ञ दर्शन में भी बौद्ध और वेदांत विचार के समन्वय का विचार रखा है। उपनिषदों का अध्ययन सन 1923 की है और स्थित प्रज्ञ दर्शन सन 1945 की है। सन 1923 से 1945 तक एक विचार हमारा हुआ, जिसमें बौद्ध का हमें सतत स्मरण रहा।
1: बाद में भूदान यात्रा में जब हम गया जिले में घूमते रहे, गौतम बुद्ध की स्मृति मन में रहती थी। वहां हमने समन्वय आश्रम की स्थापना की। उसके बाद गौतम बुद्ध के धम्मपद का रचनांतर हमने किया। सन 1923 से लेकर 1960 तक सतत यह विचार मन में रहा कि वेदांत और बौद्ध दर्शन का समन्वय होना चाहिए। बौद्ध दर्शन और वेदांत से मेरा मतलब है, हिंदुस्तान में जितने भी दर्शन साधना के विषय में परमेश्वर को अलग रखकर सोचते हैं, वे सब एक और परमेश्वर की मदद अनिवार्य मानकर जो दर्शन बने हैं वे दूसरी ओर। पहले को नास्तिक कहते हैं, दूसरे को आस्तिक, लेकिन ऐसा कहना हम अन्याय समझते हैं। आस्तिक या नास्तिक नहीं, बल्कि एक आत्म प्रयत्नवादी है, दूसरा आत्म प्रयत्न की जहाँ पराकाष्ठा होती है वहाँ मदद के लिए ईश्वर की अपेक्षा रखने वाला है। दोनों प्रयत्नवादी है, परंतु एक प्रयत्नवाद में ही समाप्त करता है और दूसरा प्रयत्नवाद के अंत में परमात्मा की कृपा की लब्धि की बात करता है। एक आत्मा पर निर्भर है, दूसरा परमेश्वर की कृपा का आवाहन करने वाला है। दोनों दर्शनों का समन्वय होना चाहिए, तभी समाधान होगा तत्वज्ञान का और तभी समाधान होगा जीवन विचार का। हमारे चिंतन का तरीका समन्वय का है। अंत में हम साम्य की आशा रखते हैं। हम समन्वय पद्धति से सोचते हैं और उसके नतीजे में अंत में हमें जरूरत है साम्य की। इसीलिए गीता को हमने साम्य योग नाम दिया। कोई कहता है गीता कर्म योग है, कोई उसे ध्यान योग कहता है, कोई ज्ञान योग। ये सब नाम सही है अपने अपने विचार में, लेकिन हमने गीता को साम्य योग नाम दिया। गीता में यह शब्द आया है, वैसे कर्म योग और ध्यान योग से शब्द भी गीता में आए हैं, और ऐसे ही गीता का आधार सब नामों के लिए है। गीता में जो शब्द आया है उसी के आधार से हमने गीता को अंत में साम्य योग ही माना है। अभिधेयम परम साम्यम, प्राप्तव्य वस्तु साम्य योग है, और समन्वय को हम अपनी चिंतन की पद्धति बनाना चाहते हैं। समन्वय पद्धति से हम साम्य योग तक पहुँचे। यह दृष्टि हमारे तत्वज्ञान की चर्चा में रही। हमारा जो दार्शनिक साहित्य है उसमें साम्य योग फलित है और समन्वय पद्धति है।
0: श्रोताओं, आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित रेडियो धारावाहिक प्रेम पंथ अहिंसा का इसमें गीता का सार आपने सुना। यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी पर 90.4 FM।

0: जीवन के रंग अनेक,
1: जिसमें होगी बातें
2: कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर,
1: और कभी कभी बातें होगी
2: छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर,
1: रेडियो सुनेरी 90.4 FM।
0: जीवन के रंग अनेक,
2: आवाज तुमचा आमचा।

0: खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? गाने के शौकीन हैं आप?
1: ये दिल बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें?
0: गाने से प्यार करते हैं आप?
2: तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने, गाने सुहाने, सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडियो सुनहरी 90.4 FM, आवाज तुम चाह।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

मनुष्य जीवन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मदमस्त मतवाले हाथी को देखा है? जब एक विशालकाय हाथी अपने मद में, अपने अहंकार में अंधा हो जाता है तो वह किसी की नहीं सुनता। वह रास्ते में आने वाले सुंदर बाग बगीचों को उजाड़ देता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता है और चारों तरफ तबाही मचा देता है। उस पागल हाथी को शांत करने के लिए महावत को अपने लोहे के तीखे अंकुश से उसके मस्तक पर कड़ा प्रहार करना पड़ता है। हमारा यह जो मन है ना, यह भी वासनाओं और अहंकार की शराब पीकर ठीक उसी मदमस्त हाथी की तरह हो गया है। इसने हमारी भीतरी शांति के सुंदर बगीचे को रौंद डाला है। कबीर साहब आज हमें बता रहे हैं कि जब तक इस मतवाले मन को पीस कर शांत नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी अंतरात्मा को वह परम सुख और परमात्मा का प्रकाश नहीं मिल सकता। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह जागृत दार्शनिक सूत्र। मैं मनता मन मारी रे, नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्मा झलकी कबीर सीस।

श्रोताओं, कबीर साहब साधक को एक अत्यंत कठोर और आवश्यक साधना का आदेश देते हुए कहते हैं, मैमंता मन मारी रे। हे साधक, यह जो तुम्हारा मैमंता यानी मदमस्त अहंकारी और मतवाला मन है, तू ज्ञान और विवेक के अंकुश से इसका संहार कर, इसे शांत कर दे, नाना करी करी पीस। इसे केवल ऊपर से मत दबा, बल्कि इसके अहंकार और इसकी वासनाओं को चक्की में डालकर नाना यानी इतना बारीक पीस डाल कि यह पूरी तरह धूल बन जाए, इसका कोई भी पुराना रूप बाकी न रहे। जब मन का यह पूर्ण विसर्जन हो जाता है, तब अलौकिक अनुभव होता है। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, तब सुख पावे सुंदरी, केवल तभी इस सुंदरी यानी तुम्हारी शुद्ध और पवित्र जीवात्मा को वह परम विश्राम, वह अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्म झलके शीश, और उसी क्षण तुम्हारे शीश यानी शीश पर उस भीतरी सहस्रार चक्र के शून्य शिखर पर साक्षात ब्रह्म यानी उस निराकार परमात्मा का परम प्रकाश जगमगाने लगता है, उसकी दिव्य ज्योति झलकने लगती है। यह दोहा कुंडलिनी योग और वेदांत के आत्म साक्षात्कार का शिखर है। आध्यात्म में जीवात्मा को सुंदरी यानी परमात्मा की दुल्हन माना गया है। जब तक मैमंता मन बीच में अड़ा है, तब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। नान्हा करी पीस चित्त की शुद्धि की पराकाष्ठा का प्रतीक है, जहाँ मन भी एक भी रुत्ति या वासना शेष नहीं रहती। जैसे ही मन विचार शून्य होता है, चेतना का प्रवाह नीचे के चक्रों से उठकर सीधे शीर्ष यानी सहस्रार में पहुंच जाता है। कबीर समझा रहे हैं कि ब्रह्म कोई बाहर देखने की वस्तु नहीं है, वह अहंता मिटती है। जब अहंता मिटती है, तो उसी शीश के भीतर परमात्मा का प्रकाश स्वयं उद्वलित हो जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने भीतर झांक कर देखिए कि हमारे भीतर का यह मैमंता हाथी कितना उत्पात मचा रहा है। हमारी जो मैं, हमारा जो बड़प्पन और हमारी जो जिद है, क्या वह हमें दिन रात बेचैन नहीं कर रही हैं? हम दुनिया को जीतने निकले हैं, पर अपने ही मन के सामने लाचार खड़े हैं। आज कोशिश कीजिए इस मतवाले मन के विवेक को अंकुश से साधने की। अपने अहंकार को, अपनी वासनाओं को राम नाम के सुमिरन में पीस कर बारीक कर दीजिए। जब यह मन पूरी तरह खाली और शांत हो जाएगा, तो अपने भीतर बैठी वह सुंदरी यानी आपकी आत्मा परम आनंद से खिल उठेगी और आपके ही अंतस में उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को जब हमने देखना शुरू किया तो हमने पास्ट में देखा, तो हमें पता चला कि जितना हम पास्ट को पकड़ के बैठेंगे खुशी उतनी छूटती जाएगी। फ्यूचर में जब हम जाते जाते हैं, प्लानिंग करते हैं या हर अचीवमेंट जो ऐसा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो डिपेंडेंसी वहां पहुंचती रहती है। और बार बार ये कहा भी जाता है कि पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में रहना चाहिए, यानी ये लम्हा, ये मोमेंट जब हम आपके साथ हैं या कोई भी जीवन में जब भी हम जहाँ हैं वो हमारा प्रेजेंट। कैसे उसको अगर हम सही तरीके से लें तो हमारी खुशी कायम रह सकती है और वो इंडेक्स बहुत स्ट्रेट रह सकता है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। सब कुछ तो हमें समझ में आ गया, मतलब जिस जिस पर डिपेंड कर रहा था वो तो छूट गया हमसे, मतलब पास्ट भी छूटा और फ्यूचर पर भी हमें समझ में आया कि जहाँ प्लानिंग सही है, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज नॉट बैड, बट देन माई डिपेंडेंसी ऑफ बींग हैप्पी वो अगर फ्यूचर पर डिपेंड होगी तो उसके साथ तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रेजेंट पे आ जाते हैं। What is exactly meant by, मतलब हर बार बात ही की जाती है, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट में रहना?
1: Actually, क्यों पास्ट और फ्यूचर में क्या होता कि जब भी हम पास्ट का वर्णन करते या फ्यूचर का करते, वी आर इन द डूइंग मोड, यू नो। पास्ट के बारे में आई से व्हाट शुड हैव आई डन, एंड इन द फ्यूचर आई से व्हाट डू आई हैव टू डू, सो इट बिकम्स द डूइंग, यू नो, द ह्यूमन डूइंग। एंड इस प्रोसेस में हम क्या भूल जाते, द बीइंग पार्ट, व्हाट डू आई हैव टू बी। एंड आज हम अपनी वोकैबुलरी को भी देखें तो हमारी सारी वोकैबुलरी क्या है, व्हाट आई शुड हैव डन, व्हाट आई शुडंट हैव डू, व्हाट शुड हैव,
0: हाउ मच आई हैव बीन डूइंग,
1: तो सब कुछ डूइंग पर फोकस्ड है। और इसीलिए हमारी हैप्पीनेस भी डूइंग पर फोकस्ड हो गई कि ये करेंगे, ये होगा तो खुशी होगी। तो राजयोग हमें सिखाता दैट यू आर नॉट ह्यूमन डूइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो फर्स्ट बी हैप्पी, नॉट डू एनीथिंग so that happy. You can get happy, but just that being has to be happy. तो वो being तो present हर moment में हम उसको realize कर सकते। तो present में रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसे हम अगर ध्यान रखें तो फिर present में रहना बहुत easy हो जाएगा।
0: जैसे present में खुश रहना या present
1: में है तो खुश है।
0: हाँ, I know, amazing।
1: present में है तो stable है। Disturbance कहाँ आ रहा था? Past का कोई इमोशन, कोई हर्ट, या फ्यूचर का कोई, यू नो, फियर या एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन भी क्या होती, क्योंकि हमने कहा एक्सपेक्टेशन हमें डिस्टर्ब करती। एक्सपेक्टेशन मीन्स फ्यूचर में आपका बिहेवियर या कोई सिचुएशन उसको प्रिडिक्ट करना, दिस इज एक्सपेक्टेशन। सो वी आर नॉट इन द प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में होंगे तो एक्सपेक्टेशंस हमारे खत्म होती जाएंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन। द प्रेजेंट ऑलवेज वुड मीन स्टेबिलिटी। तो इसमें कुछ एक बातों पर हम ध्यान देते। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात इज कि आई द सेल्फ, जो मैं हूँ, आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट, आई एम ऑलरेडी ब्यूटिफुल, आई डू नॉट नीड टू कम्पीट और कंपेयर विद एनीवन। जब हम फ्यूचर में भी अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं तो हम देखते हैं, मैं इनके जैसा बन जाऊँ तो, मैं इस पोजिशन पर पहुँच जाऊँ तो, इनके पास जो है वो मेरे पास भी आ जाए, तो देन वी शिफ्ट इनटू द फ्यूचर।
0: बट आई डोंट फील कंप्लीट, सो व्हाई इवन इफ आई क्रिएट, ओके, आई क्रिएट दिस थॉट, देन ओनली आई विल फील कंप्लीट,
1: बिकॉज़ फीलिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट थॉट आई क्रिएट।
0: ओके, दैट इज व्हाई आई फील इनकंप्लीट, बिकॉज आई थिंक दैट आई विल ओनली बी कंप्लीट इफ दिस इज अ थिंग विल हैपन।
1: यस, आई थिंक दैट आई विल ओनली बी हैप्पी, सपोज आई एम असिस्टेंट मैनेजर, लेट्स से, ठीक है, सो आई क्रिएट अ थॉट कि आई विल बी हैप्पी व्हेन आई बिकम सीनियर मैनेजर, व्हेन आई रीच देयर आई क्रिएट अ थॉट कि मैं तब खुश होंगी व्हेन आई बिकम जनरल मैनेजर। तो ये थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा, ये तो मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, या इनके पास जो गाड़ी है, जब ये गाड़ी मेरे पास भी आ जाएगी देन आई विल बी हैप्पी। तो ये जो सेल्फ है, ये एनर्जी है, ये शक्ति है। ये शक्ति को ना कोई वस्तु की ज़रूरत है, ना किसी पोजीशन की ज़रूरत है, ये अपने आप में कंप्लीट है और हैप्पीनेस इसकी नेचर है। इसकी कोई वस्तु या कोई पोजीशन या कोई फिजिकल ब्यूटी इसको कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज़ एनर्जी। दिस डजंट रिक्वायर एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू बी कम्प्लीट, दिस जस्ट रिक्वायर्स द राइट थॉट।
0: मेरी, यू नो, मी बीइंग दिस कम्प्लीट एनर्जी एंड मी acting in the present also, maybe, you know, doing things or whatever, I, me being this person, also. How does it relate?
1: I am this person only. What is this person? This person means main wo energy jo thoughts create karti, feelings create karti, is body, is costume ke dwara. Main apna role, apni responsibility nibha raha hu. Ab happiness kahan hai? Happiness meri thought hai. This I can create any time, any place, any moment, irrespective and independent of anything. Lekin maine hi wo thoughts create kiye ki main is position par pahunchunga, main inke jaisa sundar ho jaunga, mere paas itna salary aa jayega, then I will be happy. Jo energy hai, ye dhan se kaise, kyunki energy hai. Energy ko complete karne ke liye kya chahiye hoga? Sirf right energy hi chahiye hogi na. Physical cheez usko complete nahi kar sakti. Haan, beauty hai. अगर कोई हम फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, अगर मेरा हाथ कट गया सपोज यहाँ, तो हाँ मैं फिजिकली इनकम्प्लीट हूँ, क्योंकि ये फिजिकल है, इसका एक फिजिकल पार्ट ठीक नहीं है, तो आई विल से आई एम इनकम्प्लीट. सिमिलरली ये एनर्जी है, इट्स ओनली थॉट्स. सो ऑल दैट आई हैव टू डू टू फील कम्प्लीट, टू फील हैप्पी, इज टू क्रिएट राइट काइंड ऑफ थॉट्स. इवन अगर अब मेरा ये हाथ कट गया, यहाँ से दोनों हाथ कट गए, दोनों पाँव कट, it doesn't matter because I am here. Ye incomplete hoga, ye body incomplete hogi, lekin main phir bhi kahan hu? I am here. To agar main yahan baith kar I can create the right thought, even agar
0: to agar main wo right thought nahi create kar rahi,
1: to sab kuch hote hue
0: bhi main incomplete hu,
1: and tab meri wo desires ki list itni lambi hoti, ye hoga then I'll feel complete, ye hoga then I'll feel complete, and the list just goes on, and then I am either in the past or in the future. क्योंकि मैं सोचती हूँ ये सब मिलेगा, then I'll be complete. तो ये जो self real, इसीलिए कहा जाता है self realization हो, कहते हैं ना go inwards. हम हमेशा तो go inwards मतलब क्या? Just remember कि मैं एक शक्ति,
0: and again make it a belief system. You know, make it a belief actually.
1: You make it a belief, फिर उसके साथ आप experiment करो, और धीरे-धीरे it will become the truth.
0: Again, you know, the moment we'll start looking for, jab bhi hame ye lagne lage ki hame kuch aur chahiye khud ko complete karne ke liye, khud ko kitni baar hum kehte hain, oh my god, I can actually remember ki I want to feel complete, you know, I feel so incomplete, mujhe aisa lagta hai ki main adhoori hu.
1: Jaise agar hamare jeevan se koi rishta toot jaye kisi ke sath, to mujhe lagta hai hum unke bina hum adhoore hain, and this goes and takes me into a vacuum.
0: Don't even create that.
1: Because
0: you know, it's even, not true. It will only cause me pain. Yes, you know, like, let's try. Oh, my God, amazing. The first thought today in the episode only has made me feel very, very good, you know. Because somewhere, ye jo adhurapan hai, yehi humse bahut kuch karwa raha.
1: Aur ye adhurapan ko hi hum kehte hai vacuum. Jo hum kehte hai na, andar pata nahi, hollow feel ho raha hai. Hollow matlab kya? Incomplete. Andar khalipan hai. Kyun khalipan hai? Kyunki hum bahar ढूंढ रहे हैं, और बाहर ढूंढने के प्रोसेस में सी है कंप्लीट, लेकिन थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये होता तो, ये होता तो ये किस तरह की थॉट्स हैं? नेगेटिव थॉट्स हैं. ये मेरी एनर्जी को डिप्लीट करती हैं. आई ओनली हैव टू टेक केयर राइट काइंड ऑफ थॉट्स टू स्टे कंप्लीट एंड फुलफिल्ड. एंड ये जैसे ही हम क्रिएट करना शुरू करते, आई विल फील वेरी वेरी फ्री, liberated, independent. फिर होगा right मायने में independence के, I am free. नहीं तो हम हमेशा किसी न किसी पर या किसी न position पर, वस्तु पर, धन पर dependent ही रहते हैं. और एक जो बहुत important बात आती, जो हमने पिछली बार भी देखा, कि क्यों हम future में जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में, present में कोई ना कोई बाधा है, कोई ना कोई परिस्थिति है, कोई ना कोई obstacle है, और वो obstacle मेरे अंदर दर्द क्रिएट कर रहा है. मैं ये समझती हूँ कि वो ऑब्स्टिकल आया तो मेरे अंदर दर्द है, तो मैं क्या करती हूँ? आगे के बारे में सोचना शुरू करती हूँ, तो एटलीस्ट आई विल बी पेन फ्री, बट आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट. अब प्रेजेंट में ऑब्स्ट्रक्शन जो आई है, उसको फेस करने के लिए मुझे क्या थॉट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है.
0: अच्छा, फेस तो फिर भी करना ही पड़ेगा ना?
1: फेस तो करना है, फेस करना तो है ही मुझे, लेकिन फेस कैसे करना है? क्या मैं ऐसी थॉट क्रिएट करूं ताकि वो मेरे को एक ऑब्स्टिकल लगे ही नहीं? सो वी क्रिएट अ थॉट, व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे, इट्स नॉट इन द वे. हम कहते हैं ये मेरे लिए
0: रास्ते में,
1: ये मेरे रास्ते में खड़ा है, ये एक्चुअली मेरे रास्ते में नहीं है, ये ही रास्ता है. व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे. दिस परिस्थिति जो आई है, ये आई है ताकि मुझे एक ऐसा रास्ता लेना. सो लेट्स से दिस इज एन ऑब्स्टिकल, ठीक है, अब हम जा रहे हैं सड़क पे और बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर है। अब हम पत्थर को कहकर कहें कि यही पत्थर मेरे रास्ते में खड़ा है और हम रुक जाएं, नहीं, रास्ता ही एक्चुअली कौन सा है, ऐसा है, रास्ता ही ये है।
0: ओह, तो वो पत्थर आया ही मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए।
1: रास्ता ही वो है। हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं। सपोज रोड डिवाइडर आता, तो व्हाट इज अ रोड डिवाइडर, ऐसे एक रास्ते में बैरियर लगा है, तो हम वहां खड़े हो जाते हैं कि यहाँ बैरियर है, अब हम आगे नहीं जा सकते। नो, वी नो, वी से व्हाट इज द वे, द वे इज लाइक दिस, सो दैट्स व्हाई वी से इट्स नॉट इन द वे, इट्स देयर सो दैट वी सी द वे। और उससे क्या होता है, हमें रुकना नहीं है, हमें उसके अराउंड रास्ता ढूंढना है कि मेरा रास्ता क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल, इट्स जस्ट कम एंड आई हैव टू लुक फॉर द अदर वे, कि कौन सा रास्ता है आगे जाने का। उससे क्या होगा, मेरी थिंकिंग की क्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ नहीं अब मेरा क्या होगा,
0: यू नो, एक वो हताश होने वाला जो एहसास है वो खत्म हो जाएगा।
1: एब्सोल्युटली,
0: क्योंकि जैसे ही वो पहाड़ की तरह पत्थर आ जाता है सामने, हम फिर भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा, इससे मुझे जूझना है, तो उसे तो मुझे इग्नोर ही कर सकती हूँ,
1: वो कुछ है ही नहीं, वो जो आया है परिस्थिति
0: वो, तो वो
1: आई ही, वो रहेगी, वो आई ही उसे लिए है ताकि मैं अपनी सोच को एक नई दिशा देकर, उसको एक ऑब्स्टिकल नहीं, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ कर, लेकिन उसको अगर एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे तब ना, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी देखेंगे कैसी थॉट्स चलेंगे, इट विल बी अ डिफरेंट क्वालिटी। एंड दैट्स व्हाई व्हेन लाइक यू से सिचुएशन हिट मी, यू नो दिस हैज हैपेंड टू मी, सो वी विल से नथिंग हैपेंस टू मी, इट हैपेंस फॉर मी। जो भी हुआ, जो भी परिस्थिति आई, छोटी से लेके बहुत बड़ी तक, इट्स नॉट दैट हैपेंड टू मी, इट हैपेंड फॉर मी, क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आएगी इट डिमांड्स अ
0: Response.
1: It demands a response. और ये परिस्थिति ही इसलिए आई है ताकि वो मेरे क्रिएटिव रिस्पॉन्स को और इनहेंस करती है इस सिचुएशन को। आप देखो कितनी परिस्थिति,
0: तो टेस्ट नहीं हो रहा है, हम जैसे जिंदगी को एक टेस्ट बना के रखते हैं ना, कि ये टेस्ट आते हैं, ये मतलब हर उससे गुजरना ही पड़ेगा, ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं, यू नो, हर्डल रेस।
1: इट इज, इवन इफ यू लुक एट इट लाइक अ हर्डल रेस, लेट्स से हम जीवन को उस तरह की एक हर्डल रेस भी करें, तो हर्डल रेस होता है तो क्या आता है, जब वो बैरियर आता है, वो हर्डल आता है, तो हम क्या करते हैं,
0: कूद जाते हैं,
1: थोड़े उधर खड़े हो जाएंगे, ये आया ही मेरे रास्ते में, मेरे भाग्य में ही ये हर्डल है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, डू वी इवन गिव इट अ थॉट देयर, जस्ट जंप। तो जीवन में हर्डल्स तो आने ही हैं, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में आएंगे, कई बार लोगों के रूप में आ जाते, कई बार रिश्तों के रूप में आ जाते, बट अगर हम उस हर्डल को लेकर ही बैठ जाएं, जैसे ही हम उसको हर्डल समझते, सी व्हाट आर वी ट्राइंग टू चेक, वी आर ट्राइंग टू चेक हमारी थॉट्स कैसी चलती हैं, हमारी थॉट ये चलती है, अब मेरा क्या होगा, मेरे भाग्य में, उनका भाग्य तो बिल्कुल ठीक है, उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, एंड वी गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग वो तो अच्छे नहीं है, लेकिन उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है, मैंने तो जीवन में सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ फिर भी सब बुरा बुरा, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसको कैसा देख रही हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरा भाग्य खराब है, सो व्हाट हैज हैपेंड, मैं हर्डल पर आकर वहां खड़ी हो गई और हर्डल को देखकर मैं गुस्सा करते जा रही हूँ, दर्द क्रिएट करती जा रही हूँ, और ये दर्द जब मैं क्रिएट करती, मैं ड्रेन आउट हो जाती हूँ,
0: मैं देख ही नहीं पाती, मुझ में हिम्मत ही नहीं रह जाती फिर कूदने की भी।
1: एब्सोल्युटली, ताकत खत्म हो गई ना।
0: हाँ,
1: हर्डल आया तो उस टाइम एक्चुअली और क्या चाहिए, और भी ज्यादा ताकत चाहिए, अभी तो आप एक स्पीड पर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही हर्डल आया इट रिक्वायर्स एनर्जी टू जंप, लेकिन जैसे ही ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट की, कंपैरिजन की, कंपटीशन की, क्रिटिसिज्म की, ताकत सारी वहीं खत्म हो गई और हम वहां हर्डल के सामने आकर खड़े हो गए।
0: इनफैक्ट जब रेस एक्चुअली शुरू भी होती है, आई स्टिल रिमेम्बर, कहा जाता है हर पार्टिसिपेंट को कि फोकस ऑन योर यू नो पाथ, ये आई रिमेम्बर दैट, यू नो, कि हमें कोच क्या कहते थे, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, यू नो, कि आप कहाँ जा रहे हो और आपकी हर्डल्स को कैसे क्रॉस कर।
1: बस अगर आपने सिर्फ अपनी यात्रा पर देखा तो फिर हर्डल को क्रॉस करना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन जब हमने अपनी यात्रा को एक कंपटीशन बना लिया, जीवन की यात्रा में हम फ्यूचर में क्या ढूंढ रहे हैं, हम सक्सेस ढूंढते हैं, सक्सेस अचीवमेंट्स, ये होगा तो खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने जीवन को कहा इट्स विनिंग एंड लूजिंग एंड सक्सेस इज विनिंग विनिंग विनिंग, तो मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस, और थोड़ा सा भी अगर वो नहीं हुआ जो राइट मुझे लगा के होना चाहिए, आई कॉल दैट एज फेलियर. जैसे ही फेलियर आया आई गो ठीक. सो व्हाई? बिकॉज आई क्रिएटेड अ बिलीव सिस्टम, लाइफ इज अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन, कौन आगे जा रहा है किस. ये सारे बिलीफ सिस्टम्स मुझे क्या करेंगे, ड्रेन आउट ही होते रहेंगे. सक्सेस क्या है? सक्सेस इज अबाउट फीलिंग वेरी लाइट, ब्यूटिफुल एंड स्टेबल, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए. दैट शुड बी सक्सेस. क्योंकि सक्सेस किसका सक्सेस है? माई सक्सेस, हु एम आई. सो वो जब समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो हमने क्रिएट की थी ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगी. नहीं तो आज सक्सेस के नाम पे हम बहुत ज़्यादा यू नो ये दर्द से, स्ट्रेस से, गुस्से से, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. एंड सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या? वेन आई अचीव
0: विनिंग
1: दिस, वेन आई अचीव दिस, दैट्स नॉट सक्सेस. इतना दर्द क्रिएट किया इन द प्रोसेस, इतने लोगों के साथ इतना कुछ हो गया ऊपर नीचे और पहुँच गए वहाँ पर, रियली गोइंग टू फील सक्सेसफुल एट द एंड ऑफ इट? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. So the right belief
0: actually system. फिर वही होता है कि फिर आपका वो सक्सेस को पाने का दूसरा मरहला जो है आपने तय कर लिया होता है. फिर
1: ये नहीं है कि हमें वो चीजें जो हैं, जो ओहदे हैं, जो पोजीशन है, वो सब हैं, आएंगी और आती ही रहेंगी. लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? सक्सेस अगर अपने आप को कहना है तो सक्सेस विल बी कि हर परिस्थिति में हम स्टेबल हैं, हर रिश्ते में हम दे रहे हैं, हर एक जिसको हम मिल रहे हैं उसके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है, देन वी कैन कॉल आर सेल्फ सक्सेसफुल. क्योंकि मैं जो हूँ वो जो मेरी शक्ति है, जो जो मुझे मिलता जा रहा है उसके साथ मैं वो शक्ति एक्सचेंज करते जा रही हूँ, देन आई एम सक्सेसफुल. सो वी नीड टू चेक आर बिलीफ सिस्टम्स. और जो हम पास्ट में बहुत बार हर्ट हो जाते, दैट दे हर्ट मी, यू नो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया है. कभी भी अगर बैठ कर सोचो किसने मुझे धोखा दिया, किसने मुझे हर्ट किया, तो एक लंबी लिस्ट आ जाती. तो इसके लिए हम हमेशा याद रखते कि इट्स नॉट दे हु हर्ट अस, किसी ने हमें हर्ट नहीं किया. उन्होंने जो कहना था वो कहा, जो करना था वो किया, इवन चाहे वो बिजनेस में बहुत बड़ा था या चाहे वो रिलेशनशिप में, उन्होंने किया. मैंने
0: क्रिएट किया वो हर्ट
1: उस सिचुएशन में, जो जो क्रिएट किया, आई क्रिएटेड माई हर्ट. If I remember this, then the concept of past hurt, see, we can make up.
0: अपने आप को तो हम आराम से माफ भी कर पाएंगे. लेकिन एक बात है कि मतलब जब कोई कहता है कि उसने मुझे ये कह दिया, मतलब मैं उसके लिए क्या था और उसने मुझे ऐसे किया, I can understand कि उसकी कही हुई बात से मैं वो hurt create करती हूँ. लेकिन वो इतना fast होता है.
1: लेकिन देखो, कहा उसने ना, वो यहाँ है, उन्होंने कहा अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से, जो भी राइट समझा. अब हम कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था ना, यू नो सो मेनी टाइम्स वी से कि इतना गलत, मतलब हमें लगता है कि सामने वाला इतना गलत कैसे हो सकता था, क्योंकि हमारी डेफिनेशन से वो गलत है. जिसने कहा उसने तो बहुत अपनी डेफिनेशन से राइट ही कहा. लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हर एक ने अपने अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया. यू नो कई बार हम कहते हैं बेसिक डिसेंसी, बेसिक कर्टेसी, बेसिक प्रोटोकॉल, उतना भी नहीं है, ऐसे बोल दिया. लेकिन उसमें भी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि डिसेंसी, कर्टेसी, इसके भी मेजर्स हर एक ने
0: अपने अपने तरीके
1: अपने बनाए हुए हैं. जो मेरे लिए डिसेंसी है, ज़रूरी नहीं हर एक के लिए वही होनी पड़ेगी. एंड मैंने अपनी डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी क्रिएट की, एंड आई हैव गॉट attached to it, and now I expect that everyone should follow it. And jo usko follow nahi karega, to I get very, very hurt. Then I always go into the past. Unhone mujhe hurt kiya, usne mujhe dhokha diya. Let them go. Wo sare jo yahan baithe hue hain, let them go. Kyunki agar unko yahan bitha kar rakhenge, to hum wo dard create karte jayenge. So let's learn ki unhone hume dhokha nahi diya. हमने उनकी वो बात से अपने अंदर वो क्रिएट किया. अभी भी वो आ रही हैं वो थॉट्स, अभी भी वो फीलिंग्स आ रही हैं. जब भी वो आए, रुक कर अपने आप को फिर से याद दिलाएं कि ये जो हर्ट अभी क्रिएट हो रहा है, ये कौन क्रिएट कर रहा है, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ. देन इट्स ओके, यू नो इट विल टेक सम टाइम, नॉट दैट अभी डिसाइड किया और अभी खत्म हुआ, लेकिन सिर्फ जब वो अगली बार क्रिएट होगा तो आप अपने साथ प्यार से बैठें और अपने आप को सिर्फ याद दिलाएं कि ये हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है, अभी ये हर्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ ये धोखा उन्होंने दिया.
0: अच्छा, एंड देन नथिंग टेक्स ओवर ना. देन सी अगेन, अगर अभी भी मैं उन फीलिंग्स को क्रिएट करना बंद नहीं कर पा रही, सो दैट्स ओके. बट इट्स लाइक ऐसा नहीं एहसास है कि मतलब समवन एल्स हैज टेकन ओवर.
1: आई एम स्टिल, आई एम एबल टू टेल माई सेल्फ कि यस, ये दर्द की थॉट्स ये मैं क्रिएट कर रही हूँ और मुझे ही इनको फिनिश करना है.
0: तो किसी ना किसी टाइम पे अपने आप से बात करते करते करते करते मुझ में ये ताकत आ जाएगी कि मैं कर पाऊँ.
1: जब हमें ये पता चलता कि हम क्रिएट कर रहे हैं, फिनिश करना इजियर होता है. जब तक उन्होंने किया तो हम तो अपने आप को कह देते जीवन भर में नहीं भूलूंगा ये. क्यों? क्योंकि उन्होंने किया तो उनकी गलती इतनी बड़ी है कि जीवन भर उसे भूलना नहीं चाहिए. उनको क्षमा करना, हमें क्षमा ही नहीं करना, मैं जीवन भर उनको फॉरगिव नहीं करूँगा. उनको नहीं फॉरगिव करना है. वी आर क्रिएटिंग पेन फॉर आर सेल्फ टिल वी डोंट लेट देम गो. तो सिर्फ अपने आप को याद दिलाएं, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, टॉक टू योर सेल्फ विद लव, खत्म हो जाएगा. दो बार चार बार याद आएगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा. लेकिन जहाँ वो थॉट्स उनके बारे में चली जाती हैं,
0: फिर वो तो हमारे हाथ में नहीं होता ना. फिर वो तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स, क्योंकि उनके बारे में तो मुझे पूरी फ्रीडम भी मिल जाती है कि मैं किसी भी हालत तक सोच सकती हूँ. लेकिन अपने लिए अगर मैंने खुद क्रिएट किया ये पता चल जाएगा, देन दिस इज रीअश्योरेंस.
1: और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि अगर दूसरे ने किया तो मेरा दर्द में रहना जस्टिफाइड हो जाता है. यू नो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने आकर मुझे जोर से हार मांगा तो आपने मारा ना, मेरे को दर्द हो रहा है अब, तो मैं दर्द में बैठती हूँ, उन्होंने मुझे मारा.
0: हमसे हमें अगर अपने आप लगता है ना तो इतना दर्द नहीं होता. यस,
1: लेकिन अब तो मार भी कौन रहा है? बार बार जब मैं वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपने आप को मार रही हूँ. दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज इमोशनल अब्यूज एवरी टाइम क्रिएटिंग दैट थॉट. सो आई जस्ट हैव टू टेल माई सेल्फ कि अपने आप को मारना तो बंद करो, दर्द तो अपने आप खत्म हो जाएगा. बार बार वो थॉट क्रिएट करते हैं तो जोर जोर से हम अपने आप को मार रहे हैं, कोई और नहीं मार रहा. आप मुझे मारो तो मुझे, मेरे हाथ में नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग है, आप मुझे मार रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को मार रही हूँ. तो अपने आप को रोकना ये तो इजी हो जाना
0: चाहिए. में जब हम होते हैं तो अपने आप को फिजिकली भी मार रहे होते हैं.
1: यू नो दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन. कई भाई बहन ईमेल्स में या क्वेश्चंस में ये भेजते कि हम जोर जोर से अपने आप को यहाँ मारते हैं या कई बार तो दीवार के साथ. दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ फीलिंग ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है. क्या कब वो होता है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप मतलब आप बिल्कुल
0: बदल ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे,
1: तो मैं अपने आप को ही मारना शुरू कर देती हूँ. देखो, जो फिजिकली अपने आप को मारना शुरू कर दे, अंदर वो कितना अपने आप को अब्यूज कर रहे होंगे. इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन, बहुत ज्यादा दर्द अपने आप को देना. कुछ एक बातों को इस तरह से अगर हम ध्यान रखें कि आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट, आई एम ऑलरेडी ब्यूटिफुल, मुझे कम्पीट नहीं करना है, मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है इट हैज़ कम ओनली फॉर मी टू लर्न द वे. ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, और ये इट हैज़ नॉट कम टू मी, इट हैज़ कम फॉर मी टू लर्न हाउ टू क्रिएट द रिस्पॉन्स. और दूसरा, सक्सेस की जो परिभाषा है वो है स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ राइट एनर्जी in relationships, and कोई मुझे hurt नहीं कर सकता. No one can hurt me. तो जिन जिन को आज दिन तक समझा था, एक एक करके उनको हल्का होकर जाने दे, and then you see happiness कैसे हो जाएगी.
0: It becomes your property actually, and this is what we all want. So why don't we try it out? जो आज अभी हमने जो इनफैक्ट अगर आपको इस श्रृंखला की शुरुआत याद हो तो हमने बात की थी कि जो हमारी फीलिंग है हैप्पीनेस की, हम बात कर रहे थे इधर हैप्पी और सैड. सो हैप्पीनेस भी एक फीलिंग है, सैडनेस भी एक फीलिंग है, और वो मेरे थॉट्स या मेरे बिलीफ सिस्टम्स से आ रही थी. कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ सिस्टम था पूरा का पूरा कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे कुछ चाहिए कंप्लीशन के लिए, या मेरा सक्सेस या मेरी अचीवमेंट या मेरे वो व्यक्ति या वो लोग या मेरे अपने बच्चे भी. कितनी बार कितनी चीज़ों पर हम खुद को कंप्लीट होने का एहसास दिलाते हैं अगर वो हैं तो ये डिपेंडेंसी है. अगर मैं कंप्लीट हूँ ये फीलिंग मुझे आ जाए, ये मेरा बिलीफ बन जाए कि आई एम अ कंप्लीट बीइंग, and then I am interacting with others. Amazing. It gives me such a beautiful feeling. और ये हैप्पीनेस का सबसे आई थिंक पहला पायदान होगा. और उसके बाद जिस तरह से कोई भी ऑब्स्टिकल आ रही है, जैसे आपने कहा कि उसे हम एक इट हैज़ नॉट कम टू मी, इट इज़ फॉर मी, सो आई हैव टू लुक फॉर द राइट डायरेक्शन. सो कई सारी बातें आज हमने समझी हैं, उन्हें अनुभव में लेकर आए. ये बिलीफ सिस्टम अपनी अब डायरी में हम नोट करना शुरू कर दें और हर रोज़ पढ़ने लग जाएँ, ताकि जो पुराने बिलीफ सिस्टम हैं वो डिलीट होने शुरू हो जाएँ. कोई बात, कोई मन में आपकी बात ऐसी है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम है जो डिलीट नहीं हो पा रहा, प्लीज़ फील फ्री, आप हमें फ़ोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सचिन शिवानी, थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत के लिए. ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रयास है ये आगे भी चलेगा. हर बात जो हम कह रहे हैं, जो मान रहे हैं, उसे अपने अनुभव में जरूर लाएं. फिर मिलेंगे. ओम शांति.

0: श्रोताओ नमस्कार। आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आज हम गीता का सार सुनेंगे।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
2: विनोबा जी कहते हैं कि गीता का सार अगर थोड़े में कहना हो तो तीन बातों में कह सकते हैं। एक, गीता में एक बात कही गई है कि दुनिया में ऊंच नीच का भेद मिथ्या है। आदमी की योग्यता उसकी भक्ति पर निर्भर होती है, जाति पर नहीं। भक्ति मार्ग में जाति भेद नहीं और अधिकार भेद भी नहीं है। यह बहुत बड़ी बात गीता में बताई है। दूसरी बात यह है कि जिसको कर्तव्य कर्म मिला है वह उसे आमरण फल की कोई अपेक्षा न रखते हुए निष्काम बुद्धि से निरंतर करते रखना चाहिए। अपने को जो काम मिला वह न तो बड़ा होता है न छोटा, वह अपनी योग्यता के अनुरूप है। जिसकी जो भूमिका, योग्यता और मन का भाव रहता है उसके अनुसार जीवन जीने में श्रेय है। गीता की तीसरी सिखावन यह है कि चित्त की शुद्धि अखंड करते रखना चाहिए। अलग अलग गुणों का विकास जीवन में करना चाहिए। अपने मन में यदि क्रोध है तो क्षमा गुण विकसित करके क्रोध को दूर करें। जीवन में कठोरता हो तो दया बुद्धि का विकास करना चाहिए। इस तरह जीवन में से एक एक दोष दूर करते हुए देवी संपत्ति, सद्गुण आदि विकसित होते रहे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए।
0: गीता का सार एक वाक्य में आता है, मामेकम शरणम व्रज, एक परमेश्वर की शरण जाओ। ठीक यही सार कुरान में कहा गया है, इस्लाम यानी ईश्वर की शरण में जाना। इसमें सलम धातु है, उसका अर्थ है शरण जाना। इसी पर से सलाम शब्द बना। सलाम यानी शांति। परमेश्वर की शरण जाओ तो शांति मिलेगी। गीता भी यही बात कहती है, तमेव शरणम गश्च सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत पराप शांति स्थानम प्राप्त्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तू सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा तो उसकी कृपा से तुझे शाश्वत शांति मिलेगी। शरणता और शांति, ये दो चीजें गीता के एक ही श्लोक में हैं और वही कुरान में इस्लाम इस एक शब्द में है। जो ईश्वर की शरण में जाएगा वह सत्कार्य करता रहेगा, सदाचारी बनेगा। भक्ति के साथ सदाचार होना ही चाहिए। यह गीता में ध्वनि है, कुरान में भी कहा है, अल्लज़ीन आमन व अमिलुस्सा लिहाती, जो ईश्वर पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं यही मुसलमान की परिभाषा है। ईश्वर पर विश्वास रखो, परोपकार में लगे रहो, सारा भार परमेश्वर पर छोड़ दो, किसी की आस दिल में मत रखो। यही गीता का और यही कुरान का उपदेश है।
2: रामदास स्वामी ने कहा है, सकामा से नावड़े गीता, मतलब सकाम मनुष्य को गीता अच्छी नहीं लगती। गीता में सकामता के लिए, परलोक के विषय में अनुचित कल्पनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। गीता परलोक को भी मानती है और इहलोक को भी मानती है, लेकिन उसकी मुख्य दृष्टि चित्त शुद्धि की है। गीता कहती है कि समाज की और व्यक्ति की चित्त शुद्धि यही हो जानी चाहिए। वह यह नहीं कहती कि मरने के बाद वह सधे। संत यही बात कहते हैं, याची जन्मे एणे चिकाड़े, अर्थात इसी जन्म में, इसी काल में, इसी जगह पर, इसी दुनिया में अनुभव आना चाहिए, उधार का प्रश्न नहीं। गन्ने का रस जब पिया जाता है तभी मीठा लगता है, यह नहीं होता कि अभी रस पी ले और मरने के बाद उसका मीठा स्वाद चखो। उस फल की अनुभूति यही प्राप्त होती है, जैसे ऐहिक अनुभूति यही प्राप्त होती है, वैसे ही पारलौकिक अनुभूति का यही अनुभव आएगा। गीता कहती है कि मनुष्य आत्मसमाधान का अनुभव यही इसी देह में ले सकता है।
0: गीता यह शाब्दिक शास्त्र नहीं है जिसे फलश्रुति कहते हैं। गीता निष्कामता सिखाती है। निष्फल फलश्रुति गीता में कहीं भी नहीं मिलेगी। गीता जहां जहां फलश्रुति बनाती है वहां बिल्कुल ठीक बताती है, मतलब जो उस वक्त विचार में से निकलता है वही वहां बताया होता है। एताम विभूति योगम च मम यो वेचि तत्वतः का फल बताया। सोडविकम्पेन योगेन युजेने नात्र संशयः, जिसने भगवान के योग को जान लिया उसे निष्कंप योग प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक निश्चित फल बताया। यह जो फल बताया वह क्या है? यहां इस ज्ञान के लिए जो जरूरी है वही फल है। यह नहीं कहा कि जो मेरे योग को जानेगा वह परीक्षा में पास होगा, ऐसी बेकार की बातें नहीं बताई।
2: एक बार किसी ने रामकृष्ण परमहंस को पूछा, गीता का सार क्या है? उन्होंने बड़े मजे से समझाया, गीता गीता गीता इस तरह जप किया करो। गीता गीता ऐसा जल्दी जल्दी बोलना शुरू करोगे तो वह तागी तागी होगा, अर्थात बंगाली में तागी का अर्थ त्यागी होता है। फिर आपको गीता का सार मिल जाएगा। उनका समझाने का एक तरीका था, जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे वो समझाते थे, सहज विनोद से सादे शब्दों में वेदांत समझाते थे। त्याग ही गीता का तात्पर्य है। कोई उसे अनासक्ति कहता है तो कोई फल त्याग। गीता में मोक्ष संन्यास योग बतलाया है, यानी मोक्ष का भी त्याग गीता समझाती है। यह त्याग की हद हो गई। यह मुक्ति की कैची मुक्ति पर ही चलाई गई है और उनको मोक्ष संन्यास कहा। शब्द कुछ भी ले, तात्पर्य यही है कि गीता त्याग सिखाती है। यह त्याग अभावात्मक नहीं बल्कि भावात्मक चीज है। त्याग करना यानी फेंक देना नहीं बल्कि बोना। समाज के लिए जो त्याग किया जाता है वह बीज बोने जैसा होता है, उससे खूब पैदावार होगी, समाज में प्रेम बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। गीता ने त्याग की कसौटी बताई है, त्यागत शांति।
0: विनोबा जी कहते हैं कि गीता में तीन क्रियाएं करने के लिए कहा गया है। एक है दान धर्म, हम हमेशा खाते रहते हैं इसलिए हम पर अनेकों के उपकार हुए हैं। इस हालत में हम समाज के लिए कुछ न कुछ देते रहें। गीता कहती है कि दान क्रिया ही तरह यज्ञ यानी उत्पादन क्रिया भी सतत चलनी चाहिए। सृष्टि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है, उसका जितना क्षय होता है उतनी उसकी पूर्ति करनी चाहिए। खेत में मेहनत करने के बाद उसमें खाद डालकर बीज बोने पर फसल ज्यादा होती है। इसी तरह हमारे कारण सृष्टि में जो क्षय होता है उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। हम सृष्टि को देते रहे और वह हमें देती रहे। तीसरी बात, गीता यह कहती है कि चित्त शुद्धि के लिए तप करें। हमारे सब काम चित्त से चलते हैं। जीवन के सब कार्यों का आधार चित्त है। यदि चित्त शक्ति क्षीण या मलिन होती है तो सारा जीवन क्षीण और मलिन होता है। चित्त शक्ति की क्षति होने पर उसकी पूर्ति के लिए अध्ययन चिंतन निरीक्षण करते रहना चाहिए। शरीर को पीड़ा देना आदि क्रियाओं को तप मानते हैं, वह गलत है। चित्त की शुद्धि तप है और उसे बढ़ाने के लिए जो कुछ चिंतन अध्ययन ध्यान नामस्मरण आदि करने पड़ते हैं वे सभी तप है। गीता कुरुक्षेत्र में कही गई है। संस्कृत में कुरु का अर्थ है कर्म कर। कुरुक्षेत्र यानी कर्म की भूमि। इस कर्म की भूमिका पर गीता कही गई है और वही उसे मेहनत के कानों से सुनना है। गीता का रहस्य नारियल जैसा है। नारियल का ऊपरी हिस्सा शुष्क और कठोर है, भीतर का मृदु और स्वादिष्ट। इसी तरह गीता में ऊपर योग का कवच है और भीतर भक्ति का मृदुल अंश है। विनोबा जी कहते हैं कि कृष्णाष्टमी के निमित्त मेरा भी गीता सार का चिंतन चला। मेरी कल्पना एक श्लोक की नहीं थी, मुझे 18 श्लोक में सार लाना था। बुद्धि की कसरत कहिए चित्त का विषय।

0: नहीं होता और वैसी अपेक्षा भी नहीं रहती, परंतु इस चुनाव के पीछे एक दृष्टि है। दो चार विशेष श्लोक को छोड़कर बाकी सारे श्लोक सीधे अर्जुन को संबोधित कर रहे हुए हैं। अनेक प्रकार के विवेचन के प्रभाव में मुख्य बोध ढक जाना संभव है, उसे प्रकाशित किया है। बोध रूप सार निकालने का ही इरादा था। विभूति, विश्वरूपी, त्रिगुण आदि विषय 18 श्लोकों की मर्यादा कम पड़ने के कारण लिए नहीं। ऐसा नहीं, संख्या ज्यादा ली जाती तो भी वे विषय उनका महत्व और उपयोग जानते हुए भी लिए नहीं जा सकते थे। इस चुनाव का विवरण मैं करूंगा नहीं, श्रोता चित्तपूर्वक उन्हें पचा ले। हे अर्जुन, निर्वित मत होना, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। शूद्र और दुर्बल वृत्ति छोड़कर उठो, लिप्त नहीं होता जैसे पानी में कमल पात्र। आत्मा का उद्धार स्मय करे, उसकी अधोगति कभी न होने दे। आत्मा ही हमारा बंधु हितकर्ता है और आत्मा ही हमारा शत्रु है, इसलिए सतत मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मन और बुद्धि मुझे समर्पण करो, फिर निसंशय तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। जो तुम खाते हो, हवन करते हो, देते हो, जो तप करते हो, जो कुछ तुम करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इससे सब शुभ अशुभ कर्म बंधन तोड़कर, योग और संन्यास एकत्र जोड़कर, तुम मुक्त होकर मुझसे एक रूप हो जाओगे। हे अर्जुन, जो कर्म में तन्मय है, भक्ति में भरा है, जगत में निसंग और निर्वैर है, मुझ पर अपना भार रखता है, वह मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, मन को मुझ में रखो, बुद्धि मुझ में स्थिर करो, जिससे कि निसंशय तुम मुझ में एक रूप हो जाओगे। प्रेम से, अनन्य भक्ति से मेरा जतन करो, मुझे नमन करो, तुम मुझे प्रिय हो और मुझसे मिलोगे, यह मेरा निश्चित आश्वासन है। हे अर्जुन, सर्व धर्म छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सब पाप जलाकर नष्ट कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो।
1: भिन्न भिन्न दृष्टि से गीता सार चुना जा सकता है। उपरोक्त 18 श्लोक के अतिरिक्त स्थित प्रज्ञ के 18 श्लोक एक अर्थ से गीता सार ही है। गीता को मैंने साम्य योग नाम दिया है। उस दृष्टि से छठे अध्याय के 29 से 32 ये चार श्लोक गीता सार मान सकते हैं। उससे भी बड़ा चुनाव यानी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक तक 108 श्लोक। इन 108 श्लोकों में संपूर्ण गीता सार रूप में संग्रहित है। गीता के शेष श्लोक इस 108 श्लोकों का स्पष्टीकरण है। तो यह हुआ गीता का मेरा चौथा चुनाव। गीता का थोड़े में सार निकालना कितना कठिन होता है, इसका मुझे अनुभव है। 18 श्लोकों में गीता का सार लाने का यत्न पिछले दिनों में मैंने किया था। कितने ही श्लोक इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें लेने का मोह कैसे टाले, यह बड़ा प्रश्न होता है। आखिर किसी भी तरह मैंने चुनाव तो कर डाला, लेकिन उस चुनाव को मनोविनोद से ज्यादा महत्व मैंने नहीं दिया। उस समय की अपनी अपनी आवश्यकता के लिहाज से कोई कैसा भी संकलन करे, उसको सार्वजनिक या सर्वकालीन मूल्य रहेगा, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती।
0: गीता सार के लिए श्लोकों के संकलन पर विनोबा जी बोले, पिछले दिनों गांधी जी ने अपने पुत्र रामदास के लिए 40-50 श्लोकों का एक संकलन किया था। राम गीता के नाम से वह प्रकाशित भी हुआ है। 2, 3 और 4, 5 ये कर्मयोग पर अध्याय और उसमें भी दूसरा और तीसरा अध्याय गांधी जी की दृष्टि से गीता का मुख्य भाग कहा जाएगा। लेकिन मजा यह है कि उस वक्त राम गीता में गीता के इन अध्यायों का एक भी श्लोक नहीं है। श्रद्धालु मन के लिए उपयोगी आश्वासन देने वाले श्लोकों का चुनाव करने मात्र ही दृष्टि इसमें थी।

0: और इतनी ही उस प्रयत्न की फलश्रुति। गीता का सार निकालने का इरादा ही नहीं, इसलिए उसके निष्फल होने का सवाल ही नहीं। किसी समय रमण महर्षि ने अपने शिष्यों के उपयोग के लिए गीता के श्लोकों का संकलन किया था। उसमें भी वैसे ही करीब 40 श्लोक थे। उसमें उनके एक शिष्य ने उस संकलन की एक पुस्तिका प्रकाशित की। उस पुस्तिका को उस शिष्य ने एक छोटी सी प्रस्तावना भी जोड़ दी। वह बड़ी मनोरंजक थी। इस समय मेरे पास नहीं है, मैं स्मरण से लिख रहा हूँ। उस प्रस्तावना में कहा गया था, इस विषम जमाने में सारी गीता का अध्ययन कैसे संभव हो सकता है, इसलिए हमारी करुणा के कारण भगवान श्री कृष्ण ने रमण महर्षि का अवतार लिया और ये श्लोक हमें चुन कर दिए। मैंने इसमें से यही सार निकाला कि गीता के श्लोकों का एकांगी संकलन समाज सह नहीं सकता, फिर चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति द्वारा वह क्यों न हुआ हो। रमण महर्षि कोई छोटे आदमी नहीं थे, लेकिन शिष्य को पक्का विश्वास था कि कृष्णावतार का जामा पहनाए बिना रमण महर्षि के नाम से भी यह सार मान्य नहीं होगा। और उसका यह विश्वास गलत नहीं था, क्योंकि उस चुनाव में आत्मानात्म विवेक पर श्लोक चुनने की दृष्टि थी। वह दृष्टि कितनी ही उपयुक्त क्यों न हो, उस एक में सारा गीता का सार कैसे समाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संकलन ही न करे। अपने उपयोग के लिए संकलन अवश्य किया जा सकता है। अपने संकलन के अनुसार जीवन जी सके तो सारी गीता का फल भर पाया। वैसे किसी का संकलन दूसरे किसी को ठीक वैसा का वैसा ही जच जाने की संभावना कम ही रहती है, और वैसी आवश्यकता भी नहीं। सार यही कि थोड़ा पढ़े, ज्यादा आचरण करे। वास्तविक गीता सार कहाँ छिपा है यह तो भगवान ही जाने।
1: गीता की समन्वय दृष्टि के बारे में विनोबा जी कहते हैं, गीता निर्विवाद आत्मानुभव का ग्रंथ है, जिसमें सब विचारों का सामंजस्य सदा हुआ है। अनेक भाषाओं के अध्ययन में मैंने ऐसा दूसरा ग्रंथ नहीं पाया। बच्चे विसंवाद पैदा करते हैं, वैसे ही विसंवादकारी ग्रंथ बहुत बड़े हैं। लेकिन माता के लिए विसंवाद है कि नहीं, सब सुसंवाद ही है, वही गीता की भूमिका है। एकांगी अनुभव से या असमग्र दर्शन से वाद खड़े होते हैं, पूर्ण दृष्टि में वाद क्षीण हो जाते हैं। गीता ने नीति को भी नया रूप दे दिया। नीति में हमेशा यही सवाल पैदा होता है, कर्म की अकर्म। कर्म यानी क्या? जिस कर्म से चित्त में क्षोभ न हो और जिस फल के साथ मनुष्य बंधा रहे, ऐसा कर्म। तो सवाल आएगा कि हाथ में शस्त्र लिया जाए या नहीं लिया जाए। क्षत्रिय कहेगा कि जरूर लेना चाहिए, ब्राह्मण कहेगा कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दो मूल्य है। इसका मूल्य है कि न्याय की रक्षा होनी चाहिए, उसका मूल्य है शांति की रक्षा होनी चाहिए। आज दोनों अलग अलग मूल्य पकड़कर बैठे हैं, न्याय और शांति। अब क्या करे? विश्व को शांति चाहिए या नहीं? चाहिए तो न्याय के साथ चाहिए या अन्याय के साथ? जिसने जिस मूल्य को पकड़ा है वही उसी के बारे में सोचेगा। दो पक्ष एकदम अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन गीता की खूबी यह है कि दोनों में से किसी एक का पक्ष लिए बिना उसने कर्म अकर्म की कसौटी ही बदल दी।
0: तीन प्रकार के समन्वय का प्रतिपादन करते हुए विनोबा जी कहते हैं, मेरा मानना है कि गीता अनेक प्रकार का समन्वय करती है। एक तो तत्व ज्ञानों का समन्वय, जिसके बिना जीवन की बुनियाद बनती नहीं। दूसरा समाज और व्यक्ति का समन्वय, इसके बिना न समाज आगे बढ़ता है न व्यक्ति आगे बढ़ता है। तीसरा मनुष्य के अंतर्गत देह और आत्मा में जो द्वंद्व है उसका समन्वय। ये तीन प्रकार के समन्वय गीता में प्रधान हैं। और तीनों दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। इन तीनों प्रकार के समन्वय से ही जीवन में समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं। व्यक्ति और समाज का सामंजस्य ध्यान में रखते हुए मनुस्मृति में लिखा हुआ मिलेगा, साथ साथ देह और आत्मा के बीच में समन्वय होना चाहिए, लेकिन तत्वज्ञान का समन्वय नहीं मिलेगा। वह एक समाज शास्त्र का ग्रंथ है, इस दृष्टि से उसे देखना चाहिए। तो कई चीजें इसमें ऐसी मिलेगी जो दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलेगी। योग सूत्र में आप न समाज को देखेंगे, न बहुत ज्यादा तत्वज्ञान को देखेंगे। देह और आत्मा के बीच मन खड़ा है, उसके विषय में आपको विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह एक विशेषज्ञ शास्त्र है। अभी मैं तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पढ़ रहा हूँ, इसमें भक्ति तत्व की छानबीन आपको बहुत ही सुंदर मिलेगी। ऐसे भिन्न भिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ है उनका भी समाज पर बड़ा उपकार होता है। वे एकांगी होते हुए भी उनके विषयों में उनसे जो मार्गदर्शन मिलता है वह दूसरे से नहीं मिलता। दोनों से बढ़कर तीसरा है देह और आत्मा का समन्वय। मनुष्य का एक भाग शरीर है और दूसरा भाग आत्मा है, और दोनों का सम्मिलन है। मनुष्य कितना भी देहासक्त हो, उसको कभी न कभी आत्मा के समाधान के लिए कुछ न कुछ करने की इच्छा होती है। फिर वह भले ही थोड़ा दान देकर समाधान कर ले, या गंगा की यात्रा करके समाधान कर ले। इससे उल्टे अत्यंत आत्मनिष्ठ पुरुष को भी देह की बात कुछ न कुछ सुननी ही पड़ती है। जिस नौकर से काम लेना है उसका कुछ भी न सुने तो वह बड़ा जालिम मालिक कहा जाएगा। देह से अच्छा काम लेने के लिए और उससे धर्म कार्य करवाने के लिए इसकी कुछ तो सुननी पड़ती ही है। इसलिए समन्वय का मुख्य विषय देह और आत्मा के समन्वय का है।
1: देह और आत्मा की मांगे एक दूसरे के खिलाफ न जाए और दोनों का उचित समन्वय होकर जीवन समग्र रूपे न समाधान कारक बन जाए, यह सबसे बड़ा समन्वय है और उसके लिए उपयोगी ग्रंथ के तौर पर गीता है। गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ मैंने नहीं देखा जिसमें वह समन्वय पेश किया हो। मैं गीता की महत्ता को बता रहा हूँ, उसमें देह और आत्मा दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर जीवन का समन्वय पेश किया है। देह और आत्मा का समन्वय कैसे किया जाए? तो आत्मा के लिए संन्यास और देह के लिए योग, यह है गीता का समन्वय। योग के बिना देह नहीं चलेगा। अगर योग नहीं करोगे तो संन्यास भी सधेगा नहीं, स्वैराचार होगा। इसीलिए योग पूर्वक देह के साथ व्यवहार करना चाहिए और आत्मा के लिए संन्यास कहा। योग और संन्यास का समन्वय इस प्रकार से होता है, उसका मैंने नाम रख दिया साम्य योग। गीता का अपना खास विचार है जिसमें सबका समन्वय होता है, सब आ जाते हैं। संन्यास में सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग आता है तो चित्त समत्व युक्त होता है। योग में सब प्रकार के साधनों का समतुलन होता है, इसलिए चित्त में साम्य आता है। तो साम्य एक ऐसी वस्तु है कि जहाँ योग भी पहुँचता है और संन्यास भी पहुँचता है, इसीलिए मैंने गीता को साम्य योग कहा है।
0: बौद्ध विचार और वेदांत के समन्वय पर विनोबा जी कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ दर्शन पुस्तक में ब्रह्म निर्माण का आधार लेकर बौद्ध और वेदांत विचार का समन्वय किया गया है। इसके लिए गीता की परिभाषा में एक नया श्लोक बनाकर एकम ब्रह्म च शून्यम चय पश्चन्ति स पश्चन्ति, शून्य और ब्रह्म एक है, जो ऐसा देखता है वही सही देखता है, हमने स्थित प्रज्ञ दर्शन किताब समाप्त की है। बौद्ध धर्म शून्यवादी है, गीता ब्रह्मवादी है, लेकिन शून्य और ब्रह्म में फर्क नहीं। जहाँ कुस्मृतियां और अशुभ स्मृतियां समाप्त होती है वहां आत्मस्मृति जागृति है तथा शुभ स्मृतियां हजम होती है। इसी को बौद्ध शून्य कहते हैं। और गीता भी कहती है कि जहां आत्मस्मृति जागेगी वहां अन्य स्मृतियां खत्म होगी। गीता ब्रह्म का नाम लेती है। अहंकार का मिटना और प्रकाश का आना दोनों अलग अलग नहीं है। एक कहता है अंधेरा मिट गया, दूसरा कहता है उजाला हो गया। इस दोनों पक्षों का वाद कैसे मिटेगा? दोनों एक ही है, यह कहने से ही मिटेगा, दूसरे तरीके से नहीं मिटेगा। इसलिए शून्य और ब्रह्म के समन्वय का विचार हमने रखा। इस समन्वय की जरूरत हमने सतत महसूस की है। स्थित प्रज्ञा दर्शन के पहले हमने एक किताब लिखी थी जब हम जवान थे, उपनिषदों का अध्ययन। वह हमारा प्रथम लेखन है। वह अत्यंत जटिल ग्रंथ है, फिर भी गहरा है। आज भी उसमें खास फर्क करने की जरूरत हमें महसूस नहीं होती। बुद्ध भगवान का उपनिषद के अध्ययन के साथ वास्तव में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस पुस्तक की समाप्ति धम्मपद के एक वचन से की है। उसी तरह स्थित प्रज्ञा दर्शन में भी बौद्ध और वेदांत विचार के समन्वय का विचार रखा है। उपनिषदों का अध्ययन सन 1923 की है और स्थित प्रज्ञा दर्शन सन 1945 की है। सन 1923 से 1945 तक एक विचार हमारा हुआ जिसमें बौद्ध का हमें सतत स्मरण रहा।
1: बाद में भूदान यात्रा में जब हम गया जिले में घूमते रहे, गौतम बुद्ध की स्मृति मन में रहती थी। वहां हमने समन्वय आश्रम की स्थापना की। उसके बाद गौतम बुद्ध के धम्मपद का रचनांतर हमने किया। सन 1923 से लेकर 1960 तक सतत यह विचार मन में रहा कि वेदांत और बौद्ध दर्शन का समन्वय होना चाहिए। बौद्ध दर्शन और वेदांत से मेरा मतलब है हिंदुस्तान में जितने भी दर्शन साधना के विषय में परमेश्वर को अलग रखकर सोचते हैं, वे सब एक और परमेश्वर की मदद अनिवार्य मानकर जो दर्शन बने हैं वे दूसरी ओर। पहले को नास्तिक कहते हैं, दूसरे को आस्तिक, लेकिन ऐसा कहना हम अन्याय समझते हैं। आस्तिक या नास्तिक नहीं, बल्कि एक आत्म प्रयत्नवादी है, दूसरा आत्म प्रयत्न की जहां पराकाष्ठा होती है वहां मदद के लिए ईश्वर की अपेक्षा रखने वाला है। दोनों प्रयत्नवादी है, परंतु एक प्रयत्नवाद में ही समाप्त करता है और दूसरा प्रयत्नवाद के अंत में परमात्मा की कृपा की लब्धि की बात करता है। एक आत्मा पर निर्भर है, दूसरा परमेश्वर की कृपा का आवाहन करने वाला है। दोनों दर्शनों का समन्वय होना चाहिए, तभी समाधान होगा तत्वज्ञान का और तभी समाधान होगा जीवन विचार का। हमारे चिंतन का तरीका समन्वय का है। अंत में हम साम्य की आशा रखते हैं। हम समन्वय पद्धति से सोचते हैं और उसके नतीजे में अंत में हमें जरूरत है साम्य की। इसीलिए गीता को हमने साम्य योग नाम दिया। कोई कहता है गीता कर्म योग है, कोई उसे ध्यान योग कहता है, कोई ज्ञान योग। ये सब नाम सही है अपने अपने विचार में, लेकिन हमने गीता को साम्य योग नाम दिया। गीता में यह शब्द आया है, वैसे कर्म योग और ध्यान योग से शब्द भी गीता में आए हैं, और ऐसे ही गीता का आधार सब नामों के लिए है। गीता में जो शब्द आया है उसी के आधार से हमने गीता को अंत में साम्य योग ही माना है। अभिधेयम परम साम्यम, प्राप्तव्य वस्तु साम्य योग है, और समन्वय को हम अपनी चिंतन की पद्धति बनाना चाहते हैं। समन्वय पद्धति से हम साम्य योग तक पहुँचे, यह दृष्टि हमारे तत्वज्ञान की चर्चा में रही। हमारा जो दार्शनिक साहित्य है उसमें साम्य योग फलित है और समन्वय पद्धति है।
0: श्रोताओं, आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित रेडियो धारावाहिक प्रेम पंथ अहिंसा का इसमें गीता का सार आपने सुना। यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी पर 90.4 FM।

0: जीवन के रंग अनेक,
1: जिसमें होगी बातें
2: कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर,
1: और कभी कभी बातें होगी
2: छात्रों की, टीचर्स की, और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर,
1: रेडियो सुनेरी 90.4 FM।
0: जीवन के रंग अनेक,
2: आवाज तुमचा आमचा।

0: खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? गाने के शौकीन हैं आप? गाने से प्यार करते हैं आप?
1: तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने, गाने गाने सुहाने सुहाने, आपके लिए लेकर आया है रेडियो सुनील 90.4 FM, आवाज तुम चाहो।